सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: श्रीरामलला भगवान के,
1: श्री आनंदकंद भगवान के, श्री कौसल्यानंदन भगवान के, श्री दशरथ नंदन भगवान के, श्री कैकेयी नंदन भगवान के, श्री सुमित्रा नंदन भगवान के, श्री चारो भैयन के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू महारानी के, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्व संत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के, प्रातः श्रृंगार आरती के, जय जय श्री सीताराम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आज शनिवार है, 11 जुलाई 2026, पंचांग 1948 के आषाढ़ महीने की 20वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हैं। उद्घोषक इकबाल कादिर का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 9वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की मनोकामना करते हैं और आज के इस प्रसारण का आरंभ करते हैं। ये प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर उपलब्ध है।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच के डीटीएच और इसके अलावा हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्रोताओं और यात्रीगणों, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रास्ते में चलते चलते, गाड़ियों में आते हुए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने जो परिजन हैं आपके, जो आपके साथी हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तो आपकी यात्रा भी स्वस्थ होगी। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो 10वां जत्था है घाटी की जानिब रवाना किया गया, इनमें से 3,305 यात्रियों को बालतल मार्ग से रवाना किया गया है और पहलगाम के मार्ग से जो यात्रा करेंगे उन यात्रियों की कुल संख्या 5,877 है और कुल मिलाकर ये आंकड़ा 9,182 पहुंचता है, जो आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह तड़के घाटी की जानिब रवाना

0: गया। और जहाँ तक हम जम्मू की बात करते हैं, तो जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, हम उनसे राबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनसे राबता होता है, हम उनसे जम्मू के जो ताज़ा तरीन हालत वाक़ात हैं उनके बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। इस दौरान आपको ये बताते चलें कि अगर आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे टेलीफ़ोन नंबर 9596-990-954 पर राबिता कायम कर सकते हैं। वाजिया रहे कि इस नंबर पर आप सिर्फ़ SMS या व्हाट्सएप के ज़रिए ही अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके समक्ष हम ईमेल रख रहे हैं एक, जिस पर आप ईमेल भेज के हम तक अपनी कोई भी बात पहुंचा सकते हैं। ईमेल हमारा नोट करें, akashvanibaltal@gmail.com। इसी बीच हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है जावेद, आज के इस ट्रांसमिशन में।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, क्या है आपके पास ताज़ा समाचार जम्मू से हमारे लिए?
1: जी, यहाँ जम्मू के पहले बेस कैंप भगवती नगर से मैं आपके लिए अपडेट्स भी ले आया हूँ, और आपको बता दूं कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जिस जैसा कि जोर शोर से जारी है, पिछले लगभग 10 दिन होने को आए हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से जम्मू शहर का पहला बेस कैंप भगवती नगर और उसके अलावा शहर का हर कोना जयकारों से गूंज रहा है, और इस दौरान लगातार प्रशासन के अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा, उनको और बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और पिछले 8 दिनों की इस तीर्थ यात्रा में लगभग बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 2 लाख को भी पार करने वाली हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इन दिनों में हासिल भी हुआ है कामयाबी के साथ। और इस दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद, उपराज्यपाल, अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, लंगर चलाने वालों से सीधा संवाद करते भी देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक कल भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल में यात्रा से जुड़े सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और इस दौरान पुलिस, सेना और प्रशासन के बेहतर तालमेल की भी तारीफ कर रहे थे। इस दौरान कल भी यहाँ चीफ सेक्रेटरी अशोक बंदू ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा की समीक्षा की गई। हर लेवल पर, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि तीर्थ यात्रा की जो सुविधाएं हैं यहाँ, उसकी पूरी जो समीक्षा है उसको किया जाए, ताकि तीर्थ यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक, सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध जो सेवाएं हैं उनको भी देखा जाए। और तदनंतर कल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि जो सुनिश्चित की गई है तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा से जुड़ी, या उसके अलावा जो सुविधाएं दी जा रही हैं खासतौर पर, उनका व्यापक ऑडिट भी किया जाएगा, ताकि कैंपों को की ये जो परेशानियां हैं या कुछ शिकायतें भी है उनको तत्काल दूर किया जाए। तो ऑडिट करने की बात तक हुई है। इस दौरान श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनदीप के भंडारी ने विभिन्न समितियों की, जैसा कि कुछ समितियां भी काम कर रही हैं इस दौरान, इस पूरे अमरनाथ यात्रा की जो प्रक्रिया है उनकी भी समितियां हैं, तो जमीनी रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशें भी पेश की गई है और बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। तो यहाँ जम्मू के ट्रांजिट कैंप्स मुख्य रूप से तवी रिवर फ्रंट, भगवती नगर निवास स्थान, रेलवे स्टेशन शिवर और अन्य बनाए गए शिविरों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, और विभिन्न सरकारी महकमों के कर्मचारी लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो उसको अंजाम दे रहे हैं, ताकि इन शिविरों में पानी, बिजली, चिकित्सा और नियमित सफाई जो है और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तो साथ साथ उनके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समितियां हैं और खुद जो जहाँ जहाँ पर ये बनाई गई है अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स, तो वहाँ पर खास तौर पर जो यहाँ जम्मू का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके अलावा जो विभिन्न जो

0: डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, उनके कर्मचारी भी मिलकर काम कर रहे हैं। कभी हजारों की तादाद में यहाँ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सेवा भी हो रही है और स्वच्छता के साथ ये सारा माहौल चल रहा है, क्योंकि शहर पर ऑलरेडी हजारों जो श्रद्धालु हैं उनका भी लोड है, उनकी भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखना है और व्यवस्थाओं के साथ सफाई सुथराई को भी देखना है और उसके साथ साथ बेहतर माहौल में तीर्थ यात्रा को गर्मजोशी के साथ हर दिन रवाना भी करना है। तो यहाँ गर्मी और उमस में तीर्थ यात्रियों को इस तरह की सेवाएं देना, सुविधा प्रणाली को बेहतर बनाना और प्रभावी बनाना एक बड़ा चैलेंज भी है और इस चैलेंज के लिए तमाम जो लोग जुड़े हैं वो तालमेल के साथ और मिलकर काम कर रहे हैं। उसी की वजह से यहाँ जम्मू में जो काम हो रहा है वो बेहतर रूप से जारी है। इस दौरान एक बार फिर कल उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि गाइडलाइंस के पालन करने से ही यात्रा बेहतर होगी। किसी भी तरह का क्राई जो है वो मिसकम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, इसलिए उन्होंने खासतौर पर अपील की है श्रद्धालुओं से कि वो गाइडलाइंस को पूरी तरह से उस पर अमल करें। वही जानकारी के मुताबिक श्री अमरनाथ यात्रा को शुरू हुए अब लगभग, जैसा मैंने कहा कि लगभग 10 दिन का वक्त हो गया है, करीब होने जा रहा है। सख्त गर्मी और उमस की वजह से यहाँ पहुंच रहे हजारों तीर्थ यात्रियों के बीच कुछ सख्त मौसम की वजह से बीमार भी हुए हैं। बुखार, जुकाम, पेट खराब होने के अलावा पानी की कमी जैसे मामले भी इन शिविरों में सामने आए हैं। तभी रिवर फ्रंट पर बनाए गए आस्था अस्पताल में श्रद्धालुओं का इलाज और मुफ्त दवाएं भी दी जा रही है, तो साथ साथ उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि चिकित्सा, उसके साथ साथ पानी बिजली और बहुत किस्म की जो सुविधाएं वो दी जा रही है। अभी तक आस्था अस्पताल केंद्र में जो हमारी जानकारी है उसमें लगभग अभी तक 3,285 श्रद्धालुओं को डॉक्टरों की टीमों ने स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाया है, उनको उनकी चिकित्सा भी की है, उन्हें देखा भी गया है डॉक्टरों की टीमों ने जो यहाँ है। तो इंचार्ज जो है नरेंद्र सिंह, उनके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ तभी रिवर फ्रंट पर आस्था अस्पताल ही नहीं बल्कि उसके अलावा मेडिकल कॉलेज, बख्शीनगर, गांधीनगर अस्पताल, भगवती नगर बेस कैंप में भी मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं भी दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो। डॉक्टर सिंह के मुताबिक मौसम के बदलाव, खान पान के बदलने से वायरल बुखार, जुकाम, खांसी और पेट से जुड़ी जो पेट जो खराब होने की जो शिकायतें हो रही हैं उनको उनकी परेशानी बड़ी है, जिसका बखूबी ख्याल भी रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं को बेहतर उपचार भी दिया जा रहा है। तो ये एक तरह का मैं कह रहा था कि जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग सुविधाओं की, अलग अलग जो श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है उसी पर हमारी ये मोदी बात होती है। जानकारी देने का मतलब ये होता है कि यहाँ ख्याल भी रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं तक भी बात पहुंचे कि कहाँ कहाँ ये मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं ताकि श्रद्धालु भी किसी तरह से कोई उनको जानकारी ये मिले। तो आज अगर मैं बात करूं तो भगवती नगर के मुख्य बेस कैंप से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या आज भी 9,282 रही, जिसमें बालताल मार्ग से 3,305, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5,877 श्रद्धालुओं को घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, जत्थे में शामिल पुरुषों की कुल संख्या जो है 6,455 रही, महिलाओं की संख्या 2,399, बच्चे 31, साधु 256, साध्वी 46 और विदेशी मूल के 5 श्रद्धालु भी आज जत्थे में शामिल है। जत्थे में 333 वाहनों में बालताल की तरफ 127 वाहन और पहलगाम की तरफ 206 वाहन घाटी की ओर रवाना हो चुके हैं यहाँ से। तो कुल मिलाकर जो तीर्थ यात्रा है वो बेहतर माहौल में और पहले जम्मू के बेस कैंप से तमाम तरह की सुविधाओं के साथ जारी है।
1: जी आपका बहुत बहुत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसीली जानकारी के लिए। उम्मीद है कि प्रशासन अपना काम सही से करेगी, जैसे कि आपने बताया कि श्राइन बोर्ड इस सारे मामले पर एक कड़ी निगाह रखे हुए है और हर एक इंसान, हर एक बंदा जो भी इस यात्रा से जुड़ा हुआ है अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। जैसा कि आपने ये भी बताया कि श्री मनोज सिन्हा जी ने भी इस हवाले से समीक्षा की है, सारे जो अधिकारी हैं उनको ये

0: आश्वासन दिलाया है कि सारे काम बखूबी होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ मैं बताऊं तो ये तो उच्च अधिकारी तो है ही है, साथ साथ जो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनके उनकी जो सेवाएं हैं उनको कभी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो लगातार बगैर किसी और बात के बराबर श्रद्धालुओं का साथ भी दे रहे हैं और उनके साथ भी चल रहे हैं और उनकी सुविधाओं में बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं।
0: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया।
0: ये थे हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जिन्होंने एक तफसीरी रिपोर्ट, एक जामे रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है ओवरऑल जो हम बात करें। अलबत्ता इसमें यात्रियों आपको भी अपना ख्याल रखना है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे ही हमारे खाने पीने में किसी किस्म का बदलाव आता है, हमारे माहौल में बदलाव आता है, तो हमारा अस्वस्थ होना एक लाजमी सी बात है। लेकिन इसके लिए आपको घर से ही प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। आपको जैसे हम बार बार अपने इस ट्रांसमिशन में, इस प्रोग्राम में आपसे कहते रहते हैं कि अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनके आप आदि ना हों, जिनसे आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर जब आप आते हैं, फंसते हैं, तो फिर आप को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप वही चीज़ें खाएं, वही चीज़ें पिए जो आपकी स्वास्थ्य के लिए सही है। जैसे ही जो गर्मी का माहौल है, आप एक माहौल से आके दूसरे माहौल में आते हैं, गर्मी का बढ़ना या गर्मी का कम होना आपके स्वास्थ्य पर एक गहरा असर करता है। आमतौर पे हमें ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल हमारे बॉडी में अगर कम होता है तो फिर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो श्राइन बोर्ड है, श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड, वो भी एक कड़ी निगाह रखे हुए है इस सारे घटनाक्रम पर। और अगर किसी भी यात्री को कोई असुविधा होती है, कोई कठिनाई होती है, तो उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए। हम अपने जो रामबन के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे हम हाईवे का हालचाल पूछेंगे, मौसम का हालचाल पूछेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए। भक्ति संगीत सुनिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। सुबह के समय जो होता है, जो सुबह का समय होता है, उसमें आप तक अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला हमारा जारी रहता है। हमारी जो घाटी के विभिन्न भागों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं और आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचाते हैं। जो श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है उसके हवाले से फ़िलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष ट्रांसमिशन में।
1: जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
0: जी। बताइए, क्या कुछ हालात हैं हाईवे के और मौसम के हवाले से, आपके पास क्या ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं?
1: जी, मौसम बिल्कुल अब्रो आलूद है। पिछले अगर रोज से कहेंगे तो जो छोटी छोटी बारिशें हो रही है उस वजह से जो मौसम ओवरऑल जो हाईवे का है, खासकर रामबन सेक्टर में कहेंगे, रामबन बाना सेक्टर में तो खुशगवार मौसम बना हुआ है। आज सुबह से ही बादल भी हैं और अगर महकमा मौसमियात की बात कहेंगे तो उन्होंने आइंदा कुछ रोज तक हल्के हल्के बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तो ये सिलसिला अगर कहेंगे मौसम का तो बिल्कुल खुशगवार है। पिछले कई रोज से मौसम बेहतर चल रहा है और बादल, हल्की हल्की बारिशें और धूप, ये सिलसिला जो पिछले 5-6 दिन से कहेंगे तो मुसलसल जारी है। इस दौरान जो यात्रा के काफिले हैं जो आज सुबह बालतल और पहलगाम के लिए जम्मू के भगवती बेस कैंप से, भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किए गए हैं, तो उनमें जो कदरे पहले जो निकलता है बालतल वाला जो काफिला रवाना किया जाता है जम्मू से, तो वो इस वक्त कुछ वक्त के बाद अब बानहाल पहुंचा जा रहा है क्योंकि रामबन ने क्रॉस किया है और बानहाल की तरफ ही ट्रैफिक बढ़ रहा है। 127 गाड़ियां हैं, इसमें 3,305 यात्री है। इन गाड़ियों में बसें, जीप, कारें जो इसमें सवार है। उसके बाद जो पहलगाम के रास्ते जा रहे हैं 206 गाड़ियां जा रही है जिसमें 5,877 यात्री हैं। कुल मिलाकर 333 गाड़ियों में 9,182 यात्री आज सफर कर रहे हैं। 10वें बैच में जो जम्मू से पहलगाम और बालतल के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भगवती नगर बेस कैंप से जो डिटेल्स आए जाते हैं उनके मुताबिक अब तक 70,794 यात्रियों को भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की तरफ दोनों मार्गों से बालतल और पहलगाम से रवाना किया गया है, जबकि कुल तादाद जो अब तक दर्शन कर चुके, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं उनके मुताबिक

0: लाख का जो फिगर है वो क्रॉस हो चुका है दर्शन का, पवित्र गुफा के दर्शन का। वो कल तक सरकारी जो इदादोशुमार है उनके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा जायरीन ने अब तक दर्शन किए हुए हैं। इस दौरान जो कश्मीर से जो बालतर और पहलगाम से वापस जो जम्मू की तरफ दर्शन के बाद गाड़ियां आ रही है, तो उनका भी उनके भी काफिले शुरू हो चुके हैं। और कुछ वक्त के बाद जो पहलगाम का पहले पहुंचता है बानहाल में, तो वो कुछ वक्त में पहलगाम का जो काफिला वो बानहाल पहुंचा जाए, और उसका जो खाने पीने का इंतजाम जो लंगर के लिए रखा गया वो चंद्रकूट से होगा। जबकि जो बालतल वाला जो काफिला आने वाला है वो थोड़ा कदरे देर से पहुंचता है, तो उसे बानहाल में रुकाया जाएगा और यहाँ पर इनका जो खाने पीने या जो ब्रेकफास्ट या लंच का जो इंतजाम रखा गया है। इस दौरान जो जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले दिनों से बहुत सारे यात्री जो अपने सामान खो रहे हैं, अपने पैसे खो रहे हैं, मोबाइल खो रहे हैं, तो वो बाद में पुलिस और बाकी जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी तरफ से वो रिकवर करके उनका तक पहुंचाया जाता है। और इसी तरह एक 9 तारीख परसों का एक वाकया है जिसमें 1,32,000 की रकम एक ग्रुप की जो महाराष्ट्र से आया हुआ जलगांव महाराष्ट्र से 3 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप था, इनका 1,32,000 रुपए से भरा हुआ एक बैग वो गिर गया था एक कार में, गलती से इनका रह गया था जो टैक्सी इन्होंने कर रखी थी। तो बाद में जो बानहाल पुलिस है यहाँ के SHO आशिक हुसैन लोन की तरफ से जो एक पूरी तौर पर इस जैसे इनके पास ये नोट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने एकदम इस पर कार्रवाई शुरू की। और बाद में क्योंकि गाड़ी वाले जो थे जो यात्री थे उन्हें ये ड्राइवर का पता नहीं था, गाड़ी का नंबर पता नहीं, अलबत्ता उनको ये पता थी कि गाड़ी एक कार थी जिसमें ये टैक्सी में आए हुए थे। तो बाद में पुलिस ने जब ये जो CCTV लगे हुए है खासकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टोल प्लाजा के पास, उसकी मदद से एक ये कार्रवाई शुरू की गई। और इसमें फिर सोपोर पुलिस से भी मदद हासिल की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामबन पुलिस है उनकी जो अंदरली टेक्निकल सपोर्ट की गई, जो मुख्तलिफ तरीकों से इसको ट्रेस करने की कोशिश की गई और बिलआखिर उन्होंने इस गाड़ी को हासिल कर लिया है, इसको पकड़ लिया है बाद में। और उस ड्राइवर से जो पैसा था उस गाड़ी में जो बैग पड़ा हुआ था 1,32,000 का ये हासिल किया गया है। और बाद में ये जो यात्री थे उन्हें हैंडओवर किया गया तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और कल सुबह वो यात्री खुशी खुशी से यहाँ हाल के जो लंगर साइट है लांबर के ग्राउंड में, तो वहां से उन्हें वो कैश वगैरह हैंडओवर करके उन्हें मतलब वो खुशी खुशी फिर यात्रा के लिए रवाना हुए। नहीं तो उनमें बहुत टेंशन गई थी, पूरा ग्रुप भी परेशान हो गया था क्योंकि उनका तमाम पैसा जो 1,32,000 एक बैग में रखा हुआ था वो गिर गया था। और बानहाल पुलिस ने ये बड़ा वाकई शानदार काम करके इसे कुछ घंटों के अंदर अंदर ही सोपोर पुलिस की मदद से इसको ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की और 1,32,000 रुपए की रकम इन तक वापस पहुंचा दी। जी,
1: इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमारी मेहमान नवाजी है, हमारा जो इनके प्रति मोहब्बत है, प्यार है हमारे यात्रियों की जानिब, उसमें फ़िलहाल कमी नहीं आई है और ना ही इसमें कमी आएगी, क्योंकि हम अमानतदारी और ईमानदारी का इससे सबूत देते हैं एक दूसरे को। और हमारी सभी जो गाड़ी वाले हैं हमारे या जो भी इस घटनाक्रम में शामिल हैं, जो भी इस यात्रा की सफलता के पीछे हाथ हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो या कोई भी अधिकारी हो जो इसमें शामिल हैं, उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि किसी भी यात्री को किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आम लोग जो इसमें वॉलंटियर्स काम करते हैं उनसे भी हमारा यही हमारी गुजारिश यही रहेगी कि हर एक यात्री की आप दिल खोल के खिदमत कीजिए, इनका बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
0: जी शुक्रिया।
1: जी हमारे साथ हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बात कर रहे थे और आखिर पर जो इन्होंने बताया कि 1,32,000 रुपए से भरा हुआ एक बैग, कल जो महाराष्ट्र के चंद यात्री आए हुए थे उनका सोपोर की एक जो गाड़ी है छोटी गाड़ी उसमें गिर गया था, रह गया था। हालांकि उस गाड़ी वाले को फिर ट्रैक किया गया CCTV कैमराज की मदद से, और ये नहीं कि उस गाड़ी वाले ने फिर वो बैग देने से इनकार किया, हालांकि उस ड्राइवर को भी पता नहीं था कि मेरी गाड़ी में उनका कोई बैग गिर गया है। उनने फिर वो बैग उन्हें खुशी खुशी वापस दे दिया, 1,32,000 रुपये जिसमें कैश था। और इससे हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि जो किसी की अमानत होती है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। अगर हमें

0: इससे एक तो हमारा ऊपर वाला हमसे खुश होता है और दूसरा हमारी ईमानदारी का सबूत दुनिया को मिलता है, और इससे ये प्रतीत होता है कि कश्मीरी और कश्मीरियत अभी इनमें वो जज्बा बाकी है, मेहमान नवाजी का, ईमानदारी का और अमानतदारी का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर मशहूर है। फिलहाल ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए, हम जल्द ही उपस्थित होते हैं एक और रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए आप भक्ति संगीत एंजॉय कीजिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: पहुंच रहे हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा आज दिन का जहां तक ताल्लुक है, आज भी यहां से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। और श्रीनगर में आज भी, हालांकि अभी हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन ठंडी हवाएं भी चल रही है और ओवरऑल अभी यहां शहर में मौसम साजगार है और इस मौसम के चलते यहां यात्रियों की आमद भी है और यहां से यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन की तरफ रवाना करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और कल शाम को यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पर अमरनाथ जी यात्रियों के अलग अलग दो जत्थे पहुंचे थे, जिनमें मर्द, खवातीन और इसके अलावा साधु, साध्वी और कुछ बच्चे भी शामिल थे, जो अमरनाथ जी के पवित्र दर्शन के लिए यहाँ पे कश्मीर पहुंचे हैं। ओवरऑल जहां तक श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप का ताल्लुक है, जैसे कि हम मुसलसल पहले दिन से इस ट्रांजिट कैंप का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं, सहूलियात रखी गई है, अरेंजमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो यहाँ पे सैनिटेशन का निजाम हो, चाहे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें, हम यहाँ पे गर्मी का मौसम है तो इस सिलसिले में फैंस वगैरह किस तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं और साथ साथ यहाँ पीने के पानी की फैसिलिटीज या फर्स्ट एड या मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ डॉक्टर्स की यहाँ पे तैनाती है। और इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ जगहों से आए हुए जो लोग हैं, जो धर्माज हैं, उन्होंने यहाँ लंगर का एहतमाम किया है। और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है, वो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर लेड एडमिनिस्ट्रेशन हो, या यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, श्राइन बोर्ड हो, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, या जितने भी सिक्योरिटीज इदारे हो, हर एक यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और इसके अलावा इस पूरी यात्रा को श्रीनगर के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर HMT से मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि पूरी इस यात्रा को पीसफुल बनाने के लिए हर कड़ी, हर जगह पर जो है निगरानी की जाए। और इस सिलसिले में 25 से ज्यादा जो सरकार के जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, वो यहाँ इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं, गुफा से लेके ट्रांजिट कैंप्स तक, ट्रांजिट कैंप्स से लेके उन रूट्स तक जहाँ से यात्री जो है सफर कर रहे हैं या यात्रियों की आमद और रवानगी हो रही है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ एक नई फिजा, एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल हम भी हर दिन यहाँ यात्रियों के साथ इस यात्रा को लेके, इंतजाम को लेके उनसे उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनके ख्यालात सुन रहे हैं। और हर एक यात्री अभी तक यहाँ की अरेंजमेंट्स को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किए उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, यानी कि एप्रिसिएशन या एप्रिशिएट गवर्नमेंट को कर रहे हैं। और कुल मिला के ये यात्रा न सिर्फ यात्रियों के लिए एक मजहबी मुकद्दस के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि कश्मीर में ये मजहबी हम आहंगी और यहाँ की रिवायात, यहाँ की जो हमेशा के लिए वो अमन, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत की एक अलामत रही है। और इस साल भी वो इसी की अकासी करती है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु जो यात्री हैं, वो यहाँ अमरनाथ जी का दर्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ मकामी लोगों से गुल मिल रहे हैं। और साथ ही जैसे परसों भी, कल भी हमने कहा था कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर LG साहब की तरफ से ये यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो यात्रा के साथ साथ यहाँ के, यहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, उसकी खरीदारी भी करें, ताकि कश्मीर का जो आर्ट है ये चूंकि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में मशहूर ही है, लेकिन इसके जरिए ये हमारी मईशत में भी फरोग दे ये यात्रा, और ये यहाँ से एक पैगाम लेके भी चले जाए। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि अभी तक ये यात्रा जो है बेहतर अंदाज से जारी है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोएक्टिवली काम करी। और खासकर जहां तक हम श्रीनगर में देख रहे हैं, और श्रीनगर में पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रियों जो यहाँ ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं, यहाँ इनके लिए हर तरह की सुविधाएं, सहूलियात रखी गई और इवन के यहाँ काउंटर सेटअप किए गए हैं, ताकि अगर किसी यात्री को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, सो दैट वो इस काउंटर पे जाके अपनी जो है असिस्टेंस हासिल कर सकता है, या अगर उनकी कोई ग्रीवेंस हो। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी कॉन्टैक्ट नंबर या गवर्नमेंट डिविजनल लेवल पर भी टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं, सो दैट यात्री उस पर रब्ता करें। और साथ ही

0: मिनिस्ट्रियों से भी गवर्नमेंट की तरफ से अपील मुसलसल की जा रही है कि वो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज, गवर्नमेंट की जो डूज एंड डोंट्स है, गवर्नमेंट की जो हिदायत है उस पर अमल करें ताकि ये यात्रा बेहतरीन यात्रा के तौर पर हम देखें जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं। और साथ ही क्लियर का डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कल LG साहब की तरफ से भी दी गई, परसों श्रीनगर में भी, कि वो राउंड क्लॉक यात्रियों को हर तरह की सुविधा देने के लिए अपनी जो खिदमात है उसको एंश्योर करें।
1: जी, ऐसा प्रतीत होता है आपकी बातों से कि फिलहाल जो यात्रा अभी आज नौवां दिन है यात्रा का, तो इस दौरान जो इंतजाम किए गए हैं यात्री बहुत खुश हैं। इस दौरान जो प्रशासन के द्वारा इकदाम किए गए हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं, वो फिलहाल काबिल तारीफ़ हैं। उसके बाद आपने जो बात की कि अगर किसी भी यात्री के पास कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो वो हर एक ट्रांजिट कैंप में उनके काउंटर्स लगे हुए हैं अलग अलग, तो उन काउंटर्स पे जाके वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि किसी यात्री को कोई शिकायत है। अगर फिर भी किसी यात्री को किसी भी अंदाज से कोई शिकायत लगती है तो वो इन ट्रांजिट कैंप्स में जाके, इन काउंटर्स पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जो ख़ासकर आपने बात बताई कि जो गवर्नमेंट एडवाइजरीज इन यात्रियों के लिए जारी की गई हैं, इनसे निवेदन है कि वो उन एडवाइजरीज का पालन करें। आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू बात कर रहे थे। जैसा कि आपने, आपको प्रतीत हुआ होगा, आपको लगा होगा कि ये अभी फील्ड में हैं, आवाज़ें इनके टेलीफोन से आ रही थी, चलने की आवाज़ें और जो भी आवाज़ें आ रही थी, इससे ये प्रतीत होता है कि हम कितने कितने लगन से, कितने सच्चे मन से आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आप तक अपडेट्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो भी संवाददाता हैं उनका हम हृदय से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो हम तक और आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं जो हम आप तक फिर पहुंचाते हैं। इसी बीच अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की, तो उन्होंने कल जो है बालतल बेस कैंप जाकर वहाँ के जो इंतज़ाम हैं उनका जायज़ा लिया। इस सफ़र के दौरान, इस विज़िट के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए इस संदेश में सुनते हैं।
2: सात दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा अमरनाथ की, आज आठवां दिन है। अब तक मोटे तौर पर 170,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए, उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाएं। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफ़ी सहयोग मिलता है। जो भी यात्री आते हैं, कई दुकानें भी लगाई गई हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, और एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर की जो टेंट, घोड़े, बाकी संसाधनों के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी गति मिलेगी। मैंने टेंट खुद अपनी आंखों से देखा है, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे इंतजाम टेंट में हैं, सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाएं, ये व्यवस्था की गई है। जो हॉस्पिटल यहाँ 100 बेड के पिछले 3 सालों से फंक्शनल, एक पालटाल में और एक चंदनबाड़ी में, एवरेज जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया है मोटे तौर पर 1300-1400 मरीज रोज वहाँ रहे हैं। आउटडोर अभी जब मैं गया था तो 9 लोग भर्ती थे, फाउंटेन सिकनेस थी, किसी को वोमिटिंग हो रही थी। मैं समझता हूँ कि इन अस्पतालों के कारण यात्रियों को भी और

0: यात्रा में काम करने वाले हमारे साथियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी सहायता मिल रही है।
1: जैसे कि आपने सुना, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने कल बालतल जाकर, जो बालतल का बेस कैंप है, वहाँ पे इंतज़ाम का जायज़ा लिया। इस हवाले से वो क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो यात्रियों की संख्या है वो कल के दिन के अख्ताम तक लगभग 2 लाख के करीब पहुँच गई है। इसका मतलब है कि 2 लाख से जायद जो अफराद हैं, जो श्री अमरनाथ जी यात्री हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए थे, 2 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जो एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। फिलहाल आज यात्रा का 9वां दिन है। यात्रा जैसे ही आगे बढ़ती रहेगी, दर्शन रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें श्री मनोज सिन्हा जी ने ये भी बताया कि जो इंतज़ामात हैं उनसे सभी यात्री खुश हैं, और उनकी तरफ से ये भी आश्वासन दिलाया गया कि किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका हमारे मेहमानों को, हमारे यात्रियों को नहीं दिया जाएगा। और जो उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री की बात की, इसमें हम भी बार बार अपने जो दुकानदार भाई हैं, जो भी इस काम से वाबस्ता लोग हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश रहती है कि आप जो है इन मेहमानों को, इन यात्रियों को सही चीज़ दें, सही दाम पर दें, क्योंकि इससे फिर हमारा जो आर्ट है वो आगे प्रेजेंट होता है। इसलिए अच्छा खासा मुनाफा आप रखिए, ठीक ठाक मुनाफा रखिए, लेकिन चीज़ इनको अच्छी दीजिए, क्योंकि इससे फिर आपके आर्ट की आगे बात होती है। अगर आपने खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ दे दी तो फिर हमारे आर्ट का फिर नुकसान हो सकता है, और आपके जो आपका जो कारोबार है, आपकी जो रोज़ी रोटी है, उस पर असर पड़ सकता है। श्राइन बोर्ड और पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा जो प्रशासन है, वो इसी बात के ऊपर लगा हुआ है कि यात्रियों की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यात्रियों को किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से सारे जो हमारे ट्रांज़िट कैंप्स हैं उन पर जो है काउंटर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रशासन ने 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, जिनका प्रयोग करके आप श्रीनगर और जम्मू में अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807199। इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए 1800-1807198। जी हाँ, और इसके हवाले से और इसी हवाले से एक और बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जैसे हमने पिछली रिपोर्ट्स में सुना कि कुछ एक यात्री जो है ख़राब स्थिति के कारण, ख़राब सेहत के कारण, स्वास्थ्य के कारण अभी बहुत परेशानी में है। कई एक लोगों को उल्टियां हुई हैं या उनका पेट ख़राब हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, वही सब चीज़ें खानी पीनी हैं जो आपको लगता है आपके लिए सही है। ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, लेकिन पानी ज़्यादा पिएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ वो सारी दवाइयाँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि खुदा न खास्ता अगर आपको ऊपर यात्रा के रास्ते में किसी किस्म की दिक्कत का सामना होता है तो आप फटाफट से वो दवाइयाँ निकाल करके उनका प्रयोग करके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आपकी ये यात्रा सुखद हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। सुबह के 8 बज रहे हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं और वहाँ से हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार सुनते हैं।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिक

0: लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल व्यापारिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेस के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10

0: पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। किसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन

0: इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खत्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खत्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारी में एक बड़ा संग मील करार दिया। भारत को मौक़ों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज़ रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इकतसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया।

0: गया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन इस्तेकाम की बुनियादी जामीन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फ़तह और ज़मीन में नीज़ आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहरे हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहरे हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शाकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तिजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटा बेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में मरकजी दाखला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तज्जिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीज़न साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को तहफ़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: नायब सदर CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में बिहार कानूनसाज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुकासमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तेहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ

0: महीने हुई जंगबंदी खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राजी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए 2 जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद जख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबार ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया, जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में तआवुन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समझ में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रजा प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारे ये विशेष प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी उपलब्ध है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 9वां दिन है। कल 8वां दिन ख़त्म होते होते लगभग 2 लाख से जायद श्रद्धालु

ने आकर पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। बानीहाल, माफ कीजिएगा, बालतल और जो प्राचीन मार्ग है पहलगाम का, दोनों मार्गों से यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से जारी है और हम इस यात्रा के आगे ऐसे ही जारी रहने की मनोकामना करते हैं, दुआ करते हैं और सभी यात्रियों की

0: अच्छे ढंग से संपन्न कर पाएंगे, तभी जाकर आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे और आपका ये सफ़र मुकम्मल होगा, पूरा होगा। साथ में ही अपने जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखिए, और रास्ते में चलते चलते अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखिए जब आप यात्रा के लिए जा रहे हों, और साथ में ही छोटा मोटा सामान जो खाने पीने का, चॉकलेट, टॉफ़ी, ड्राई फ्रूट जैसे छोटे मोटे सामान, क्योंकि यहाँ इस इलाके में एनर्जी लेवल का कम होना एक आम सी बात है, लाजमी सी बात है। ख़ासकर जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनका आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि पानी का स्तर जो आप ऊपर जाकर जो ऑक्सीजन का स्तर है वो कम हो जाता है, और पानी पीते रहने से जो आपकी बॉडी में वाटर लेवल है वो भी सही रहता है। श्राइन बोर्ड और पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है, आपकी किसी भी शिकायत, आपकी किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए वो हमेशा आपके एक इतला की दूरी पर हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, और हर एक जो भी छोटा बड़ा इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, प्रशासन का या जो भी वर्कर्स हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने भी कल जो है बालतल बेस कैंप का दौरा किया, वहाँ पे इंतज़ाम का जायज़ा लिया, और उसके बाद जो उन्होंने एक रिपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट दी, जिसके बाद हमें ये लगा कि जो सारे इंतज़ाम हैं वो अच्छे से हैं, और जो सारे इंतज़ाम किए गए हैं उनका लाभ सारे यात्री उठा रहे हैं, चाहे वो हमारी हमारी चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, ख़ास तौर पे जो पालकी वाले, घोड़े वाले और जो पैदल यात्री यात्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जो एडवाइजरीज जारी की जाती हैं उनका पालन करने के लिए श्री मनोज सिन्हा ने बहुत ज़ोर दिया है। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखिए, जैसे कि हमने रिपोर्ट्स में सुना कि कई एक यात्रियों की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप एक अलग माहौल से आके एक दूसरे माहौल में आ जाते हैं और आपके स्वास्थ्य का बिगड़ना एक आम सी बात है। इससे बचें, एक ऐसा खाना पीना इख्तियार करें जो आपको लगे कि नहीं, इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आगे नहीं होगी। मौसम की जहाँ तक बात करें, पूरी घाटी में आप चाहे जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बात करें तो मौसम फ़िलहाल खुशगवार बना हुआ है। किसी भी घटना की हमें कहीं खबर नहीं है, बारिश या किसी दूसरी चीज़ की हमारे पास कोई इतला नहीं है। मौसम के हवाले से जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और श्रीनगर में सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला फिर थम गया, और हमारी यही मनोकामना रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि मौसम का साथ रहे, और जो यात्री एक मनोकामना लेकर, एक उम्मीद लेकर, आस लेकर, अपने मन में दुआएं लेकर, प्रार्थनाएं लेकर आ रहे हैं और आने वाले हैं, उनकी यात्रा पूरी हो और सफल हो। और ये प्रसारण आप सुनते रहिए, हम मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक दर्शन रिपोर्ट भी आएगा। फ़िलहाल के लिए आप भक्ति संगीत एंजॉय कीजिए और ये प्रसारण सुनते रहिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें, और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग

0: शूज ही पहने, रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और इस प्रसारण में हमारा यही कर्तव्य, हमारा यही फर्ज होता है कि आप तक यात्रा से मुतालिक जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हम तक पहुंचती है वो हम आप तक पहुंचाएं। टेलीफोन लाइन पर हमारी बात हमारे जो विभिन्न भागों में घाटी के हमारे संवाददाता होते हैं, सुबह हम उनसे बात करते हैं और उनके इलाकों का हाल चाल जानते हैं जो भी इस यात्रा से जुड़े अहम इलाके हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रसारण में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, सभी प्रियजनों को मेरा शुभ प्रभात। नाम दिनों जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 9वां दिन है और जुलाई की 11 तारीख है। भगवान शिव की भक्तों की ये पवित्र यात्रा पूरी आस्था उत्साह और सफलता के साथ निरंतर जारी है। मध्यम हवाओं और सुहाने मौसम के बीच आज सुबह 4 बजे नारायण शिव से 6,000 से ज्यादा यात्री गुफा के और अपना रक्त सफर बांध चुके हैं। पहलगाम के नुनो बेस कैंप से वाहनों के जरिए तीर्थ यात्री चंद्रवारी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां से पंचकर्णी और दीगर अवशेष प्रक्रियाओं की पुष्टाक व शेषनाग और पंचकर्णी की और अपनी पदयात्रा आरंभित कर चुके हैं।
2: जी,
3: हिमालयी पहाड़ों ट्रैक से गुजरकर तीर्थ यात्री दोपहर तक शेषनाग और पंचकर्णी पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार शेषनाग और पंचकर्णी में रात को ठहरे जो श्रद्धालु का जत्था है वो अपनी यात्रा जारी रखे हुए आज ही वो गुफा में मौजूद शिवलिंगम का दर्शन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार दर्शन से लौटने वाले सैकड़ों यात्री जो लंदन बेस कैंप में मौजूद थे आज सुबह जम्मू की जानिब रवाना किए गए, जो अभी थोड़ी देर में नौयो टनल पार कर चुके हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई से कल शाम तक बाबा बर्फानी की द्वार दर्शन करने वाले भक्तों की तादाद 2 लाख तक पहुंच गई है।
2: जी,
3: इस बीच जम्मू के भगवती नगर आधार क्षेत्र से 9,182 यात्रियों पर मुश्तमिल 10वां जत्था डेजर्ट कैंप काजी 12 बजे पहुंचने वाला है, जहां से पालतर और पहलगाम के लिए अलग अलग काफिले रवाना किए जाते हैं। इनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 206 छोटी बड़ी वाहनों में 5,877 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम के ओर रवाना होगा। इनमें 4,232 पुरुष, 1,398 महिला, 109 साधु, 38 आदमी, 14 बालक और 5 ट्रांसजेंडर शामिल है, जो दोपहर तक पहलगाम पहुंच जाएंगे।
2: जी,
3: प्रशासन की ओर से नुनवन बेस कैंप शीशनाग और पंचकर्णी में यात्रा पर आए हुए भक्तों के विश्राम, भोजन, पीने के जल और स्वास्थ्य सहूलियत की समुचित विशेषता की गई है। हर जगह शौचालय रह गए हैं और स्वच्छता को लेके मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष भी यात्रा को स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके चलते सफाई अधिकारी सरकारी व गैर सरकारी तौर पे दिन रात पूरी यात्रा मार्ग में सफाई सफाई में लगे हुए हैं।
2: जी,
3: क्योंकि ये इलाका जो है पहलगाम का स्थल, उसमें माहौलियात को जबरदस्त निगरानी हो रही है और इस तरीके से हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत की तरफ से जो 5 मुकाती फार्मूला दिए थे यात्रा के लिए, उसमें खासकर माहौलियात को साफ रखना भी शामिल है और उसको साफ रखने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। कैंपों में कायम लंगरों और हाइजेनिक खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है, जबकि आराम और व्यायाम के लिए वाटर प्रूफ और टिकाऊ इम्बू और टेंटों का इंतजाम भी अच्छी तरह किया गया है, ताकि बिगड़ते मौसम में किसी भी यात्री को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बात मौसम की आ गई तो मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक जो यात्रा ट्रैक में मौसम खुशगवार बना रहेगा। इस वक्त पहलगाम से अमरनाथ गुफा से मौसम मुकम्मल तौर पर साफ है। पहलगाम की कई पहाड़ियों से खिली खिली धूप भी नजर आ रही है, जबकि इस वक्त तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, जो दिन में 20 डिग्री तक बढ़ सकता है। जम्मू से पवित्र गुफा

0: जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी गई है, जो इसमें अहम पहलू होता है सुरक्षा की, वो सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, कोई शक नहीं है। सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ताकि यात्रा पुरमन और सफलता के साथ रवा दवा रहे। जी,
1: जैसा कि आपने बताया कि इस साल जो है सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने 5 नुकाती जो फॉर्मूला बताया है सफाई के हवाले से, इस हवाले से लोगों का क्या रद्द अमल है? क्या लोग सफाई सुथराई की जानिब अपना ध्यान दे रहे हैं? सफाई सुथराई का किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है? जो कचरा वगैरह होता है उसको कैसे फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है?
0: मैं आपको ईमानदारी से बता दूंगा कि माहौलियात का मामला हर एक स्टेट और हर एक इलाके से अपना अपना तरीका होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ विभिन्न भागों से हमारे पास यहाँ लोग आते हैं, हमारे यात्री जो हमारे भाईजान आते हैं यहाँ, वो अपने अपने इलाकों से होते हैं, उनको सफाई किस तरह रखनी है किस तरह नहीं रखनी है मुमकिन हो कि उन्हें इस बारे में ज्यादा नियत ना हो। लेकिन यहाँ जो पते की बात है वो मजे की बात है कि ये जो विभाग बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग, जो सफाई कर्मचारी है वो पल पल उन्हें सूचित करते हैं, पल पल उन्हें समझाते हैं, पल पल उन्हें हर जगह दिखाते हैं, उनके बोर्ड लगे हुए हैं कहाँ सफाई करनी है, कहाँ क्या डालना है, कि सात जगह पे जिस तरीके से मुख्तलिफ कर्मियों के डस्टबिन लगे हुए हैं और उन्हें सूचित किया जा रहा है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो या दीगर और कोई महकमा, वो सब उनको बार बार सजग करते रहते हैं कि सफाई इस तरह करें। पुलिस वाले, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, पुलिस वाले सफाई का दर्ज लेते हैं और खुद यात्री जहाँ तक हमने देखा कि अभी वो सफाई का बहुत पालन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो कुदरत के नजारे, ग्रीनरी जो देखते हैं, वो जो पहाड़ों ऊंचे पर्वतों के जो फलक सुगा पर्वतें हैं उनकी खूबसूरती को देख के वो मसरूर हो जाते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ कोई गंद हो। तो इसलिए जब हम भी, हमारे पास भी कुछ वीडियो मिलते हैं जो बराबर पवित्र गुफा से लेके पहलगाम तक जब हम देखते हैं तो सफाई का बहुत ही ख्याल ज्यादा रखा गया है।
1: जी, और हम यही अपेक्षा, यही उम्मीद आगे भी रखेंगे कि जो हमारे लोकल्स वहाँ पे हैं और जो हमारे मेहमान, जो हमारे यात्रीगण वहाँ पे आते हैं, वो आगे भी जब तक यात्रा चलेगी या उसके बाद भी इस सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, क्योंकि सफाई सुथराई से ही जो हमारे, हमारा जो माहौल है, हमारी ये पूरी वादी है ये स्वस्थ रहेगी और इसी तरह से हमारे मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब इस तफसीली रिपोर्ट के लिए। हमारे साथ हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक बात कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छी बात, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट को इख्तिताम किया कि लोगों में भी अब सफाई सुथराई की जानिब एक रुझान बढ़ गया है, एक उनमें एक पॉजिटिव सोच आई हुई है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो हमारी वजह से गंदा हो। खाने पीने के चिप्स के बिस्किट्स या पानी की जो बोतल्स होते हैं उन्हें वो अपने मन से बिना बोले ही डस्टबिन्स में डालते हैं और कहीं जो कोई नहीं कर पाता तो उसके लिए बाज़ाबता तौर पे अनाउंसमेंट्स होती हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी है वो लोगों को ये आश्वासन दिलाते रहते हैं, ये इंडिया देते रहते हैं, हिंट देते रहते हैं कि जी आपको ये जो डस्टबिन हैं लगाए हैं ये कूड़ा आपको उन्हीं डस्टबिन्स में डालना है। और जो यात्रा मार्ग है, चाहे हम पहलगाम या बालतल मार्गों की बात करें, वहाँ भी हम लगातार अपने श्रोताओं से, अपने यात्रीगणों से यही निवेदन करते आ रहे हैं कि इस मार्ग को भी आप कृपया करके साफ रखें, क्योंकि आपके बाद भी और मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए आप इस रास्ते को, इस पूरे पद को साफ रखने की कोशिश करें। और डस्टबिन्स रास्ते में बहुत जगह पे लगे हुए हैं, आप उनका प्रयोग करें। गीला कचरा आप अलग से डस्टबिन में डालें और जो सूखा कचरा, रैपर वगैरह आपके पास होता है वो आप अलग डस्टबिन्स में डालें, क्योंकि फिर इस कूड़े को अलग अलग करके डिस्पोज ऑफ करना उसमें आसानी रहती है। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है। आप हम तक अपनी बात, कोई शिकायत, कोई सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पर। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर श्रीनगर के लिए प्रशासन ने जो जारी किया है वो है 1800 180 7199। और इसके बाद जम्मू के लिए हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800 180।

7198। इसी तरह से हमारे स्टूडियोज़ में भी एक हेल्पलाइन नंबर चलता है जिस पर आप व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए अपनी बात, अपनी शिकायत या अपना कोई भी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में, किसी कष्ट में हैं तो हम तक अपनी बात पहुंचाइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी उस बात को आगे पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ या जिस तक भी वो बात पहुँचानी है। हमारे स्टूडियोज़ का हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। ये वाजिया रहे, याद रहे कि इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर आपको सिर्फ एसएमएस या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचानी है। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए, भक्ति संगीत सुनते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हमारे साथ इसी बीच टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस ट्रांसमिशन में।
3: खैर मकदम आपका भी।
2: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हम तक बहुत ही मुदल्लल जानकारी पहुंचाते हैं जो गांधरबल और आपके इस इलाके के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, खासकर हमारा जो बालतल बेस कैंप है उसके हवाले से। आपके पास क्या है ताज़ा तरीन जानकारियाँ यात्रा के हवाले से? आज यात्रा का 9वां दिन है, क्या इतलात हैं आपके पास और क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
3: हम अपने श्रोताओं को यात्रा के हवाले इस तरह की सूचना देना चाहते हैं कि 57 रोज जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा आज 9वें रोज बालतल मुखी मार्ग से सदा पूर्वक एवं सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु पूरे उत्साह तथा भगवती भाव के साथ पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बालतल क्षेत्र में मौसम बेहद सुहावना एवं खुशनुमा बना हुआ है। इस मन मोहक मौसम के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए उत्साह पूर्वक रवाना हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक 12,490 श्रद्धालु को बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। बाबा बर्फानी के जय जयकारे तथा हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 10,317 पुरुष, 1,817 महिलाएं, 128 बालक बालिका, 24 साधु, 20 साधियां, 6 ट्रांसजेंडर एवं 178 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसी बीच बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंच रहे हैं। बीती रात 10 बजे तक 27,852 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके बालतल मार्ग से बेस कैंप बालतल पहुंचे। इन श्रद्धालु में 18,005 पुरुष, 8,980 महिलाएं, 330 बालक बालिका, 170 साधु, 18 साधियां, 9 ट्रांसजेंडर एवं 340 सुरक्षा कर्मी थे। बाबा बर्फानी का दर्शन करके बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु जिले प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को लेकर बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने न सिर्फ श्रीनगर कारगिल राजमार्ग के अन्य पड़ाव पर यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं रखी हैं, बल्कि दुमेल से पवित्र गुफा तक अन्य पड़ाव, खासकर कालीमथा, पंचतरणी, संगम टॉप, लोअर केव तथा अपर केव तक हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। अगर इस वर्ष बड़ी संख्या में यात्री घाटी आगमन होकर दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाते हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा उन तमाम यात्रियों के लिए उम्दा व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी जाती हैं। श्रोताओं, अगर यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे तो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं एवं यात्री कॉन्वॉय के दौरान किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी वाहन को कॉन्वॉय के आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को चारों ओर चाकू चौबंद रखा गया। इधर बालतल बेस कैंप में कयाम पजीर यात्रियों को रात्रि विश्राम के बाद आज मुख्तलिफ वाहनों में कड़ी सुरक्षा के बीच वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की अनुमति दी गई। वह यात्री कॉन्वॉय भी जम्मू की ओर रवाना है। इधर ट्रांजिट कम शादीपोरा में बीती रात 10 बजे तक 159 यात्री पहुंचे, जिनमें 137 पुरुष, 21 महिलाएं एवं एक साधु शामिल था। 12 छोटी बड़ी वाहनों में सवार इन यात्रियों में 37 यात्री पंजीकरण किए बगैर ही ट्रांजिट कम शादीपोरा पहुंचे, जबकि 52 यात्रियों ने RFID कार्ड्स भी हासिल नहीं किए थे। इस दौरान प्रशासन के द्वारा यात्रियों को बार बार निवेदन की जाती है कि कृपया पंजीकरण किए बगैर यात्रा करने का निर्णय न लें एवं प्रशासन के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करके केवल यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी
2: जी, ये सारे इंतज़ामात देखकर हमें ये लगता है कि प्रशासन इस साल बहुत ही चाको चौबंद है, और जो सारे यात्री हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा में भी किसी किस्म का कोई जो है लैतोलाल नहीं बरता जा रहा है, और ख़ासकर जो भी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं यात्रियों को दी जानी चाहिए थी, उन पे भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कल श्री मनोज सिन्हा ने बालतल का जो बेस कैंप है वहाँ का दौरा किया था, उसके बारे में आपके पास क्या इतलात हैं?
3: जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल बेस कैंप बालतल का दौरा किया और वहां पे चिकित्सा विभाग की जानिब से जो हॉस्पिटल वहां पे बेस कैंप में रखा गया, उन्होंने वहां का भी दौरा किया और यात्रियों से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि इस साल अगर काफी मात्रा में देश के विभिन्न भागों से यात्री यहाँ बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं, क्या उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उससे संतुष्ट हैं। तो यात्रियों ने बिल्कुल इत्मीनान का इजहार करते हुए मनोज सिन्हा को बताया कि इस साल जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था किए गए हैं उसको लेकर यात्री काफी संतुष्ट हैं। और मनोज सिन्हा ने बाजाबता तौर जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की और उनको हिदायत दी कि आने वाले दिनों के दौरान यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा, तो लिहाजा उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखने के लिए उन्हें बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है। और इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिले प्रशासन के जितने भी अफसर हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा के साथ आला सिविल और पुलिस अफसर जो है वो आज बालतल में ही कयाम पजीर है और वो बाजाबता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि व्यवस्थाएं जो है उनमें किसी तरह की कमी ना की जाए और साथ ही जो सिक्योरिटी के का प्रबंध किए गए हैं उसमें लैतुलल से काम न लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। जी
2: जी आप भी हमारे पास ये तफसीली रिपोर्ट पहुंचाने में कोई लैतोलाल नहीं बरतते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे आगे भी बात होती रहेगी, फिलहाल के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: हमारे साथ हमारे जो बानी गांधरबल के संवाददाता हैं रहीम रिजवान, वो बात कर रहे थे और आश्वस्त करा रहे थे सभी यात्रियों को कि उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी किसी भी सुविधा को लेके कोई भी लैतोलाल नहीं बरता जाएगा, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है कि आप सब लोग आएं आराम से, किसी भी कष्ट, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत यहाँ पे पेश ना आए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल, डीटीएच के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण जारी है। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। आइए अपने श्रीनगर केंद्र से उर्दू खबरों का बुलेटिन सुने।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 8 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद ने 2 लाख का हिंसा पार करके एक बड़ा संगमेल तय किया है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद बाबा बर्फानी के तय श्रद्धालुओं के अकीदे की अक्कासी करती है। इस दौरान आज भी बालथल और चंद्रवाड़ी के रास्ते से कई हजार यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। उधर जम्मू से आज ललसुब यात्रियों का 10वां जत्था भी वादी की तरफ रवाना किया गया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों और दिगर मुतलिका इदारों के इश्तराक से यात्रा के पुरअमन, महफूज और एहसन अनाकात के लिए जामिया इंतजाम किए गए हैं। बालथल बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का जायजा लेते हुए LG ने वहां मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिहाइश, सफाई, तिबी सहूलियात और दीगर बुनियादी इंतजाम का मुआयना करते हुए कहा कि बालथल और चंदनवाड़ी में कायम 100-100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल यात्रियों को मियारी तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में है, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए, ये व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के तीसरे शुमारे के लिए ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई की। ऑफिशियल ब्रांडिंग की नकाबकुशाई के साथ ही मजकूरा मैराथन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुल गया है। वाजह है कि यह मैराथन अक्टूबर के महीने में मुनक्किद होगी। इसी दौरान खिदमत सेंटर एसोसिएशन के एक वफद ने भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफद के अरकान ने वजीर आला को खिदमत मराकज के कामकाज और लोगों को इन मराकज के जरिए फराहम की जा रही खिदमात के बारे में तफसीली जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में एक अहम पेशरफ्त के तिब के शोबे में तालीम के फरोग के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS के लिए 50 सीटों के इजाफे का ऐलान किया गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस सिलसिले में GMC श्रीनगर में रवा तालीमी सेशन से ही MBBS की मौजूदा 200 निश्चितों को 250 करने की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में सामने आए एक वाक्य के तनाजुर में तालीमी इदारों में दर्सी किताबों और दीगर मवाद की जांच के लिए एक तरीकेकार वज़ह किया है। इन जाब्तों के मुताबिक एक मुनज़्ज़म इदारा जाती फ्रेमवर्क के जरिए तदरीसी जांच और मवाद की तस्दीक के लिए वक्तन फवक्तन सभी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में किताबों और दीगर मुतालाती मवाद की का जायजा लिया जाएगा। महकमे ज़री पैदावार में तकनीकी सेक्रेटरी GA सूफी ने पशुपालन और भेड़ पालन के शोबे में कश्मीर खित्ते के किसानों के लिए खिदमात की फराहमी और महकमा जाती स्कीमों की अमलावरी में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। कश्मीर सूबे के महकमे पशुपालन की कारगुजारी का एक मीटिंग में जायजा लेते हुए उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो सभी स्कीमों और प्रोग्रामों की बरवक़्त तकमील यकीनी बनाने के लिए रुकुमात के तसरुफ में तेजी लाएं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले भर में आयुष तिबी खिदमात की फराहमी के लिए कौमी आयुष मिशन की सरगर्मियों की कामयाब अमलावरी यकीनी बनाने के लिए इस मकसद के खातिर बैन महकमा जाती तालमेल और मुतवातिर निगरानी पर जोर दिया है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मासी गुफ्तगू के मौजू से मुतलिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैनपुरा शोपिया में भी मनुष्यात से छुटकारा पाने की गरज से एक बड़े जानकारी प्रोग्राम का इनका किया गया। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, सियाहत, खेल और आफात से निपटने के बंदोबस्त के शोबों में 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिसे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तालुकात में एक नई लचक आने की तवक्कु है। और अब आखिर में दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: आपने हमारे श्रीनगर केंद्र से उर्दू खबरों का बुलेटिन सुना। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण जारी है। FM बालतल से 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसी बीच हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने हम तक ये एक वॉइस नोट भेजा है, वॉइस रिपोर्ट भेजी है, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए ضلع رامبن میں پہنچنے والے شری امرناتھ یاتریوں کے تاثرات ہیں, ان سے کی گئی بات چیت ہے, لیجیے آپ بھی سنیے.
3: مہاراشٹر سے آیا ہوں, میرا پراپر ضلع ہے جالنا, میرا نام ہے پرتھوراج نوگھرے, ہم 105 بندے یہاں پہ امرناتھ جی کے درشن کے واسطے آنے والے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کرے, آگے جانے دے رہے گاڑیاں, ابھی یہ روم میں ہم اندر جا کے آئے, روم میں جا کے آئے, ایک دم بولتے سب جگہ پہ سوچھتا ہے, کچھ یہاں پہ تھوکنے کا نہیں, یہاں پہ چیکنگ پوسٹ بھی بہت بھاری ہے, وہاں پہ پوری الاؤڈ نہیں, کچھ الاؤڈ نہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو, کیونکہ ہم جاننا مہاراشٹر سے آ رہے, سب اچھا لگ رہا ہے.
4: جی لو ہے جی, میرا نام وکرم پردھان ہے جی, گاؤں سگا اور ضلع کرنال جی, تو یہاں پر آ کے بہت اچھا فیل ہوا. تو صبح 12 بجے ہمیں جموں سے چلے تھے, تو یہاں پر ہماری گاڑی روک دی گئی ہے, تو اب یہاں پر ٹھہرانے کے لیے یہاں پر روک دیا گیا, تو یہاں پر ہی رکنا ہے, ابنوں کہہ رہے ہیں صبح 4 بجے یہاں سے نکالیں گے.
5: بہت مزہ آ رہا ہے حقیقت میں, بھگوان کی کرپا سے ایسا واتاورن جو ہم کو یہاں پہ دکھ رہا ہے, یہاں پہ آنا چاہیے, وہ میرا سجھاؤ ہے.
6: میرا نام اویناس راول ہے, میں گجرات, میرے ٹور کا نام ہے بجرنگ ٹور اینڈ ٹریولس, موربی گجرات سے میں آ رہا ہوں, میں 40 پیسنجر لے کر امرناتھ بابا کی یاترا کے لے کر آ رہا ہوں.

0: और बाबा की कृपा है कि मेरे 40 पैसेंजर को बाबा का दर्शन होए, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही ग्रेट फील हो रहा है और यहाँ की संस्था ने सेवा भी अच्छे से करके रखा है। मेरा नाम सतीश टिपारे, हर चीज में अच्छा है।
1: जम्मू कश्मीर आए हैं अभी, यहाँ पे आके अच्छा लगा है। सेफ्टी के लिए ठीक ही, अब जो कर रही है गवर्नमेंट तो सही कर रही होगी। अब अपने को उतना तो नॉलेज है नहीं, लेकिन अब जितना गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आगे तो कुछ कर नहीं सकते अपने मन से कोई यहाँ पे, तो अभी तक तो बेस्ट है। अब यहाँ के अब देखते हैं फैसिलिटी क्या है यहाँ पे, क्या नहीं गवर्नमेंट की।
2: मेरा नाम प्रदीप है सर, मैं हरियाणा करनाल से आया हूँ सर। सुविधा सर बढ़िया है यहाँ पर, सरकार ने जो सुविधा करी है सर बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा है हमें। यात्री जो निवास है बहुत अच्छा है सर, अब देखते आए हैं तो पता चलेगा सर।
3: अब फिरोजपुर की ओर से 19वां भंडारा लगाया गया है, जो कृषि भक्तों के लिए हर टाइम तत्पर है, हम उनकी सेवा के लिए। हम लोग जो है 19 साल से लगातार इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति फिरोजपुर की ओर से।
4: मेरा नाम शोक कुमार है जी, ये 19 साल से भंडारा लगातार इस इलाके में चल रहा है। तभी कोई मन और तन से अपनी सेवा कर रहे हैं, पूरी मांग मांग से कर रहे हैं। अब जी बिल्कुल 12 महीने 30 दिन रहेंगे, 24 घंटे लंगर चलता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर रोड से मिलनी चाहिए सारी सारी की सारी यात्री निवास होके जाए, हमारी यही डिमांड है।
5: ये थी एक रिपोर्ट जो हम तक पहुंचाई थी हमारे मानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब ने। और इन यात्रियों के तासुरात सुन के ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग बहुत खुश हैं। फ़िलहाल तो ये सारे जम्मू में हैं ट्रांज़िट कैंप में, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो इंतज़ामात हैं, उनसे ये खुश हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन्हें हमारी कोशिशें, हमारे यहाँ के इंतज़ामात भी पसंद आएंगे। और हमसे, हमारे प्रशासन से जो भी बन पड़ा है हमने वो किया है। हमारे सभी मेहमानों का, हमारे सभी यात्रियों का जो आराम है उसे हमने प्राथमिकता दी है, उनकी सुविधा को हमने प्राथमिकता दी है, उनके लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं। और हमें भी बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसे अपडेट्स, ऐसे फीडबैक्स हम तक पहुंचते हैं। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आने वाले दिनों में जो भी यात्री आने वाले हैं उनकी खिदमत में भी कोई किसी किस्म की कोई कमी ना रह पाए। फ़िलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, भक्ति संगीत सुनते रहिए।
6: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
7: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जारी है। आज यात्रा का 9वां दिन है। ज़िला गांधरबल के बालतल मार्ग पर जो मुनज़्ज़म और खुश उसलूबी से यात्रा है वो जारी है। आज 11 जुलाई को सुबह 7 बजे तक बालतल के दुमेल गेट से कुल मिलाकर 12,490 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किए गए हैं। इनमें से 10,317 पुरुष, 1,817 महिलाएं, 128 बच्चे, 24 साधु, 20 साधवियां, 6 ट्रांसजेंडर, जबकि 178 इनके साथ सिक्योरिटी एहलकार या सिक्योरिटी कर्मी शामिल हैं। उधर सुबह 8 बजे तक 3,060 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के मुकद्दस गुफा में जाकर दर्शन मुकम्मल किए। इनमें से 2,085 पुरुष, 845 महिलाएं, 27 बच्चे, 23 साधु, 2 ट्रांसजेंडर, जबकि 78 सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं सुरक्षाकर्मी वो शामिल हैं। हमारे पास जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम बालतल की जानिब से एक और इतला आई है, जिसके मुताबिक जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल 7:30 तक बालतल में मौसम साफ़ है, जबकि दुमेल, रेल पथरी, काली माता, पोष पथरी और पंचतरनी में मौसम अबर आलूदा है। ब्रारीमर्ग संगम लोअर जो केव है और मुकद्दस गुफा के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे

की पाबंदी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतज़ामिया और सिक्योरिटी अहलकारों के साथ मुकम्मल तआवुन करें। जी हाँ, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम आती हैं, वो है मौसम की जानकारी लेते रहना और ट्रैक जो रास्ता है उसके मुतालिक जानकारी लेते रहना। मौसम तो हमें आँखों से दिख जाता है कि बादल घने हैं पतले हैं, बारिश होगी या नहीं होगी वो तो हम ऐसे अपनी अक्ल से अनुमान लगा सकते हैं, मगर जो रास्ता है उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस इलाके में रास्ते बहुत दुश्वार हैं, बहुत कठिन हैं, कभी भी कहीं पर भी रास्ता ब्लॉक हो सकता है और हमें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए इलाज क्या है कि हमें जो वहाँ का इंतज़ामिया है, वहाँ का मैनेजमेंट है, उनसे राबते में रहना है, रास्ते और मौसम के हवाले से हमें उनसे जानकारियाँ लगातार लेती रहनी चाहिए। फ़िलहाल हमारे पास सुबह 9 बजे तक का ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट भी आ चुका है जो हम आप तक पहुँचाएँगे इस भक्ति भरे गीत के बाद।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल से, FM पहलगाम से, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल से, DTH पर और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमने ये भक्ति संगीत सुनने से पहले आपसे वादा किया था कि जो 9 बजे तक का हमारे पास दर्शन रिपोर्ट आ चुका है, हम वो आप तक पहुंचाएंगे, जिसके मुताबिक आज सुबह के 9 बजे तक कुल मिलाकर 6517 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 4383 पुरुष, 1929 महिलाएं, 54 बच्चे, 43 साधु, 2 साध्वीज, 3 ट्रांसजेंडर और 103 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा काफ़ी खुश करने वाला है, क्योंकि इसमें जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से दिख रही है। जो 10,000 से जायद यात्रियों का जत्था है, काफिला है, पवित्र गुफा की जानिब जो दुमेल के द्वार से छोड़ा गया, वो अभी पवित्र गुफा की जानिब रवानदवा है। और इसमें जो आगे वृद्धि होगी, जो प्राचीन मार्ग गांदरबल से, ये पहलगाम से जो यात्री जाते हैं, उनका भी जो हमारे पास लेखा जोखा आएगा, कुल मिलाकर जो लेखा जोखा आएगा, हम वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच हम आपको ये इतला भी देना चाहेंगे कि अगर आप सेंसिटिव हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इस इलाके में आपको अपने साथ एक सनस्क्रीन या कोई कोल्ड क्रीम साथ में रखना लाजमी है, क्योंकि हो सकता है कि मौसम तब्दील होने से आपकी स्किन पर असर पड़े और फिर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जहाँ तक बात रही निगरानी की, तो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो हमारा HMT में चलता है, वहाँ से इस पूरी यात्रा की घटनाक्रम की जो सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी की जा रही है, और पूरा इसमें एक टीम लगा हुआ है जो ये सुनिश्चित करवा रहा है कि यात्रा और यात्रियों को किसी किस्म की कोई असुविधा ना हो, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू

कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा डीटीएच के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने कल बालतल बेस कैंप जाकर वहाँ के इंतजाम का जायज़ा लिया। वहाँ जो भी प्रशासन के द्वारा कदम उठाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, उसका एक जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए मजीद क्या कुछ कहा, लीजिए आप भी सुनिए।
1: 7 दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा अमरनाथ की, आज 8वां दिन है। अब तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए, उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफ़ी सहयोग मिलता है। जो भी यात्री आते हैं, कई दुकानें भी लगाई गई हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, होटल हो, गाड़ियां हो, इन सबको एक बड़ा साधन और एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर की, जो टेंट, घोड़े, बाकी संसाधनों के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी गति मिलेगी। मैंने टेंट खुद अपनी आंखों से देखा है, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे इंतजाम टेंट में हैं, सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाएं, व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा ही मानी जाएगी। दो हॉस्पिटल यहाँ 100 बेड के पिछले 3 सालों से फंक्शनल है, एक बालटाल में और एक चंदनबाड़ी में। एवरेज जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, मोटे तौर पर 1300-1400 मरीज रोज वहाँ रहे हैं आउटडोर में। अभी जब मैं गया था तो 9 लोग भर्ती थे, माउंटेन सिकनेस थी, किसी को वोमिटिंग हो रही थी। मैं समझता हूँ कि इन अस्पतालों के कारण यात्रियों को भी और यात्रा में काम करने वाले हमारे साथियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी सहायता मिल रही है। एक तो श्रद्धालुओं और यात्रियों से अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन ने और श्राइन बोर्ड ने बनाई है, उस व्यवस्था का पालन करें। उनकी सहायता के लिए पूरा प्रशासन तत्पर है, कोई उनको परेशानी हो तो कैंप डायरेक्टर को या जो भी ऑफिसर लगे हुए हैं सुरक्षा बल के उनको बतावें, उनकी हर प्रकार की सहायता की जाएगी। कुछ दलाल किस्म के लोग हर जगह होते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। हर सुविधा के लिए, हर सर्विस के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, उससे अगर ज़्यादा कोई भी चार्ज मांगता है तो उसकी शिकायत कैंप डायरेक्टर से या पुलिस को करें, तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई।
0: ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, जो कल बालतल गए थे और वहाँ सभी जो इंतजाम थे उनकी समीक्षा की, उनका एक जायज़ा लिया। और इसमें इन्होंने एक दो बातों का जिक्र जो किया वो ये कि जो इंतजाम हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, और अगर होगी तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड से बात कर सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। और साथ ही में जो वहाँ पे आपको गुमराह करने, आपको भटकाने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनकी बातों पर आप ध्यान ना दें। आप एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए जाएं, प्रॉपर चैनल के ज़रिए जब आप जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। और हमें ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे जो यात्री हमारे हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ आते हैं। हमने बार बार अपनी इस ट्रांसमिशन में बात की है कि आप एक प्रॉपर चैनल से आइए, रजिस्ट्रेशन करके आइए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके फिर स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं, आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम खड़े हैं और आपको हर एक मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। इसलिए जो है आप एक अच्छे चैनल से आइए, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अपने साथ लाइए, जो RFID कार्ड आपको दिया जाता है वो अपने साथ रखिए, अपना पहचान पत्र साथ रखिए, साथ में अपनी जेब में एक डायरी रखिए जिस पे आप अपना नंबर लिखेंगे, घर का एड्रेस लिखेंगे, साथ ही में अपने किसी साथी का टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस लिखेंगे। और सफाई सुथराई की हम बात इस ट्रांसमिशन में बार बार करते रहते हैं, आप सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, आपके साथ जो आपके परिजन हैं, आपके साथी हैं, उनका भी खास ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए यह ट्रांसमिशन जारी है, इसका हिस्सा बने रहिए और भक्ति संगीत भी सुनते रहिए।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

जी श्रोताओं, मौसम के हवाले से हमारे पास एक ताज़ा तरीन जानकारी आ चुकी है, जिसके मुताबिक जो जम्मू से बटोत का रास्ता है और बटोत से अनंतनाग का जो रास्ता है, उसमें आपको कहीं कहीं पर हल्की बारिश हल्की बारिशें देखने को मिलेंगी और जो मौसम है वो अबर आलूदा रहेगा। इसी के साथ जो पहलगाम से पवित्र गुफा तक का रास्ता है, इसमें भी कहीं कहीं पर हल्की बारिशें हो सकती हैं और जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा सकती है। इसके लिए आपको इतला दी जाती है कि आप अपने साथ हल्के फुल्के गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। और अगर हम इसके बाद बात करें जो हमारा बालतल से पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है, इसमें भी बादल से ये इलाका घिरा रहेगा और कहीं कहीं पर छींटें बारिश की गिर सकती हैं। और इसमें भी आपको जो वहाँ से यात्री सफ़र कर रहे हैं पवित्र गुफा की जानिब, उन्हें भी इतला दी जाती है कि अपने साथ गर्म कपड़े रखें और दस्ताने या टोपी वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी साथ रखें, क्योंकि इस इलाके में जो है तापमान का गिर जाना एक आम सी बात है। और तापमान जब गिर जाता है और आप इसके यूज्ड टू नहीं हैं तो आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथ एक रेनकोट भी ज़रूर रखिए और एक लाठी, अगर हो सके तो एक लाठी भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बारिश होने के बाद ये रास्ता स्लिपरी हो जाता है और आपके फिसलने का अंदेशा रहता है। फ़िलहाल जो एक और रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है हमारे एक संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने रामबन से, वो ये कि जो 8वां जत्था है यात्रियों का जो वापसी की राह पर है अभी जम्मू की जानिब, वो आज 153 छोटी बड़ी गाड़ियों में 4,768 यात्रियों को लेकर ये काफ़िला फ़िलहाल जम्मू की तरफ अग्रसर है, अपने रास्ते पर है। और हम इनके सुखद यात्रा और इनकी घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं और यही कामना करते हैं कि इनका जो ये सफ़र है वो सफल रहा हो, इनकी जो मनोकामनाएं हो वो पूरी हो। और हमारा ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए, और अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है 9596990954, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, akashvanibaltal@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। इसी के साथ प्रशासन के द्वारा दो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी आपकी सुविधा के लिए रखे गए हैं, जिस पर आप श्रीनगर या जम्मू में अपने अपने मसले मसाइल हुक्काम तक पहुंचा सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर रहेगा 1800-1807199। इसी तरह से अगर आप जम्मू से कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं उसके लिए नंबर नोट कीजिए, 1800-1807198। जी हाँ, ये थे कुछ टेलीफोन नंबर्स और ईमेल आईडी जिस पर आप अपनी शिकायतें, अपना सुझाव, अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप भक्ति संगीत एंजॉय करते रहिए, जैसे ही हमारे पास ताज़ा अपडेट्स आएंगी हम आपको उनसे अवगत कराएंगे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल के साथ साथ ये प्रसारण आप तक DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी उपलब्ध है। मौसम की हमने कुछ देर पहले बात की, पूरी घाटी में इस वक्त मौसम खुशगवार बना हुआ है। हालांकि मौसम अभी अबर आलूदा है और जो यात्रा जाने

का रास्ता है, चाहे वो बालतल बेस कैंप का रास्ता हो या पहलगाम के मार्ग का रास्ता हो, वहाँ पर भी हमने आपको बताया कि बादल बादलों से घिरा हुआ है वो पूरा इलाका। कहीं कहीं पर बारिश की जो है अपेक्षा जताई जा रही है। आपको सतर्क रहने का मैसेज दिया जाता है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने साथ सारा ज़रूरी सामान रखें, जो भी आपको अगर बारिशें हुई तो उस दौरान जो आपको काम आएगा, जैसे कि आप अपने साथ एक रेनकोट रखिए जो आपको बारिश के पानी से बचाएगा, एक लाठी अपने साथ रखिए जो आपको चलने में मदद करेगी, क्योंकि बारिश होने के बाद ये रास्ता, पहाड़ी रास्ता, पथरीला रास्ता बहुत स्लिपरी हो जाता है। और आप एक अच्छा जूता जिसमें एक एंटी स्लिपरी सोल लगा हो वो पहनकर यात्रा के लिए जाएं। ख़ास तौर पर यात्रा के रास्ते से जब आप वापस आ रहे हो तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और इस बारे में जो हमारा श्राइन बोर्ड है और जो बाकी मैनेजमेंट है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है, अपना काम कर रही है। हर एक अपने फ़र्ज़ पर इस वक्त अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए हमें नज़र आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो बाकी मैनेजमेंट है, वो बार बार इंतज़ामात का जायज़ा लेते आ रहे हैं। आपको अपने खाने पीने का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। यात्रा के दौरान आपको अपने बैग में छोटी मोटी खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे चना हो, चॉकलेट हो, चिप्स हो, या बिस्किट या एक पानी की बोतल हो, वो साथ रखना अनिवार्य है, क्योंकि आगे आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको बीच बीच में कहीं कहीं पर ब्रेक भी लेना चाहिए। लेकिन ब्रेक ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि फिर रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगता है। और हमने आपसे सुबह एक घटना शेयर की थी, जिसमें 1,32,000 रुपये जो महाराष्ट्र के यात्री थे, उनका 1,32,000 रुपये का 1,32,000 रुपये जिसमें बैग में थे, वो बैग एक गाड़ी में रह गया था। फिर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद उनको वो बैग वापस मिला। और जो है ये सारा घटनाक्रम जो है, इस पर एक निगरानी टीम काम कर रही है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में, जो HMT में चलता है, वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा में और उनकी सुविधाओं में किसी किस्म का कोई लैतोलाल ना बरता जाए। और हम यात्रियों से ये भी निवेदन करते हैं, ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरीज आती हैं, इतलात आती हैं, मशवरे आते हैं, उन पर आप ज़रूर अमल करें, ज़रूर काम करें, क्योंकि ये मशवरे तो आप ही की सुरक्षा के लिए, आप ही की बेहतरी के लिए दिया जाते हैं। ख़ास तौर पर जब आप यात्रा के लिए जाते हैं और रास्ते में जो भी आपको देखना पड़ता है, रास्ते में जो भी आप करते हैं, उस पर एक निगरानी टीम बैठी हुई होती है और आपको वो उसी हिसाब से फिर आगे इतला देते हैं। और जो है इस रास्ते में आप चलते चलते आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी, आपको सर दर्द होगा, तो अगर आप ऑक्सीजन लेवल को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो आप अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन रख सकते हैं। और इससे बचने के लिए, सर दर्द से बचने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे, और पानी पीने के साथ साथ आप ख्याल रखेंगे साफ़ सफाई का। रास्ते में डस्टबिन लगे हुए हैं, आपके पास अगर कोई डस्ट है, कूड़ा करकट है, आप वो उन्हीं डस्टबिन में प्रॉपरली डालेंगे। गीला कचरा अलग डस्टबिन में डलता है और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डलता है। और एक सनस्क्रीन हो सके तो अपने साथ रखिए, क्योंकि मौसम के बदलने के साथ साथ आप एक डिफरेंट मौसम से आते हैं, डिफरेंट इलाके से आते हैं, और जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो आपकी जो चमड़ी है, ख़ास करके चेहरे की चमड़ी, तो उस पर एक असर हो सकता है। इसलिए आप अपने साथ एक सनस्क्रीन रखिए अच्छा, जो आपको इन परेशानियों से आगे बचाएगी। और साथ में ही आप अपने अपनों का, अपने परिजनों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि क्योंकि जब वो आपके साथ हैं तो ही आपकी यात्रा जो है वो अच्छी रहेगी। वो स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी यात्रा भी सफल रहेगी। फिलहाल

0: आगे हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास आखिरी दर्शन रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक आज कुल मिलाकर अभी तक 9372 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिसमें 6353 पुरुष, 2748 महिलाएं, 75 बच्चे, 65 साधु, 5 साध्वियाँ, 3 ट्रांसजेंडर्स और 123 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हमारे पास जैसे ही आगे और अपडेट्स आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।
1: निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्यु मुखात गतम प्राणम बला दाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। मार्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय अल्पायु था। ऋषियों ने उसको शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सम्मति प्रदान की। मार्कंडेय ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखकर शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का यथाविधि जाप करने लगे। समय पर यमराज आए, किंतु मृत्युंजय की शरण में गए हुए को कौन छू सकता है? यमराज लौट गए। मार्कंडेय ने दीर्घायु पाई और मार्कंडेय पुराण की रचना भी की। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। हे मृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूं। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है, जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: में जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

0: capita income stood at over 6.46 lakh rupees in the 2024-25 financial year, nearly three times the national average, despite accounting for just 0.05% of the country's population. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during next 3 days. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. And that is the end of this news bulletin.
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के साथ साथ डीटीएच और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। हमारे पास दिन के 12 बजे तक का लेखा जोखा आया है जो दर्शन रिपोर्ट के तौर पर हम तक पहुंचा है, जिसके मुताबिक आज दिन के 12 बजे तक कुल मिलाकर 14,303 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। जी हां, 14,303 यात्रियों ने आज दिन के 12 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इनमें से 9,560 पुरुष, 4,325 महिलाएँ, 111 बच्चे, 111 साधु, 7 साध्वियाँ, 4 ट्रांसजेंडर्स और 185 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। बहुत ही खुश कर देने वाला आंकड़ा, बहुत ही उत्सुक कर देने वाला आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है और हमें भी इसकी अपेक्षा है, उम्मीद है कि ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ता रहे। फ़िलहाल के लिए जो अपडेट हमने आपको दिया अभी तक का दर्शन रिपोर्ट, उसके मुताबिक 14,303 यात्रियों ने दिन के 12 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। और इन यात्रियों से यही निवेदन है कि पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें और अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो भी आप वहाँ पर जाके मांगें और अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने साथियों का ख़ास ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट कराया कि मौसम फ़िलहाल पूरी घाटी में बुरालूदा है और कहीं कहीं पर बारिशें होने की संभावना जताई गई है। और आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम तक जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपको उनसे अवगत कराते रहेंगे।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: जी हाँ श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आकाशवाणी के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। दिन के 12 बजे तक कुल मिलाकर 14,303 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 9,560 पुरुष, 4,325 महिलाएं, 111 बच्चे, 111 साधु, 7 साध्वी और 4 ट्रांसजेंडर्स के अलावा 185 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। श्रोताओं, इस दौरान जो घाटी का जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको बहुत हद तक मदद मिलती है क्योंकि लाखों की तादाद में यात्री यहां आते हैं, लाखों की तादाद में इस सीज़न में बाकी टूरिस्ट घूमने के लिए यहाँ आते हैं। और यात्रा के दौरान कश्मीर में सयाहों और इन यात्रियों की तादाद बढ़ने से शाल, कालीन, पेपर माशी, अखरोट की लकड़ी के काम और दीगर दस्तकारी मसनूआत के फ़रोग में इजाफा होता है। मकामी जो दुकानदार हैं, कारीगर हैं और छोटे ताजिर हैं, उनकी आमदनी में इससे काफ़ी इजाफा होता है क्योंकि उनको मौका मिलता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने का। मकामी दुकानदारों, कारीगरों और दुकानदारों को मुनासिब कीमत, मयारी मसनूआत और खुश अखलाकी को तरजीह देनी चाहिए ताकि यात्री या और बाकी घूमने वाले जो लोग हैं वो अच्छा तासुर लेकर जाएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे कहनी ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपका व्यवहार जो रहता है दूसरे के साथ, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके दूसरे के साथ पेश आने का तरीका, वो बड़ा असर करता है आपके कारोबार पर। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास इस साल कोई बंदा आया, उसने आपसे कोई चीज़ ली और वो घर गया, और अगर आने वाले सालों में या इसी सीज़न में उसके घर से कोई और लोग यहाँ आने वाले हों, आशा रखते हों यहाँ आने की, तो वो उनको आपका रेफरेंस देंगे। इसका मतलब कि आप अच्छे व्यवहार से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। और जो मकामी चीज़ें यहाँ की हैं, उनकी असल शनाख्त, जो ज्योग्राफी अहमियत है, जिसको GI टैगिंग भी कहते हैं, वो कई एक चीज़ों को GI टैगिंग मिली है। जैसे केसर यहाँ का हुआ, उसको GI टैगिंग मिलती है। यहाँ का कानी शाल हुआ, उसको GI टैग मिल चुका है। यानी कि उसमें आपको जो है मिलावटी चीज़ मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और जो ऐसे रेड़ी पटरियों पर आपको या अलग अलग करके आपको बहलाते फुसलाते हैं कि ये जी ओरिजिनल केसर है, वो है, ये है, मगर उनसे हमारा आपका निवेदन आपसे है कि उनसे आप केसर या ऐसी कोई वस्तु ना लें, ऐसी कोई चीज़ ना खरीदें जिस पे आपको GI टैग ना दिखाएं। इसके साथ ही जो डिजिटल अदायगी यानी कि ऑनलाइन लेन देन है, वो एक माध्यम बन गया है आज पेमेंट करने का, उसमें भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल इसके हवाले से भी बहुत सारे फ्रॉड आ गए हैं मार्केट में, जिससे आपको सावधान रहना है। हमारे दुकानदार भाइयों को भी सावधान रहना है और जो पे कर रहे हैं उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस हवाले से भी कि यात्रा जो है चल रही है, इसमें आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने अपनों का ख्याल रखना है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं यहाँ से कि आप अपने साथ एक डायरी रखिए, जो हमारे लेट लिसनर्स हैं उनके लिए ये बात ज़रूरी यहाँ पर कि आप अपनी जेब में एक डायरी रखिए जिस पर आप अपना टेलीफ़ोन नंबर रखेंगे, घर का एड्रेस रखेंगे और घर का टेलीफ़ोन नंबर रखेंगे ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको ट्रैक किया जाए, आपके घर वालों से बात की जाए। और साथ ही में आप अपने किसी एक साथी, जाओ जाने पहचाना साथी है आपका, उसका टेलीफ़ोन नंबर और उसके घर का पता भी अपने उस नोट पैड में नोट करके रखें ताकि आगे जाके किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना हो। बाकी हम यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हमसे कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं या प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, वो हम आपको इस भजन के बाद बताने की कोशिश करेंगे।

0: नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ आमिर। एक और सभा में, एक और मजलिस में आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। दोबारा हम आपकी खिदमत में उपस्थित। शाम 6 बजे तक इस विशेष प्रसारण में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा समाचार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस समय मौसम का जो मिजाज है, मौसम हल्का अभ्रच्छन्ना है, तापमान सुखद बना हुआ है और यात्रा के लिए परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल हैं। यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें, उनका पालन अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

जी हाँ, भजन आप सुन रहे हैं। ये देखिए ना, शिव भजन केवल संगीत नहीं होते बल्कि भक्ति, श्रद्धा और अंतर्मन की शांति का माध्यम है। जब हम भगवान शिव का स्मरण भजनों के माध्यम से करते हैं ना, तो मन एकाग्र होता है और जीवन की भागदौड़ के बीच कुछ पलों का सुकून मिलता है। शिव भजन हमें त्याग, करुणा, संयम और सरलता का संदेश देते हैं। भगवान शिव को आदियोगी और महादेव के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना हमें ये सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी धैर्य, संतुलन और दया का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। शिव भजनों की मधुर धुन और पवित्रता श्रद्धालुओं के हृदय में आस्था का दीप प्रज्वलित करते हैं। श्रोताओं, फिलहाल के लिए रुक करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कर 10 मिनट हुआ है।
1: आकाशवाणी श्रीनगर है, एक
0: आकाशवाणी श्रीनगर की
1: ये
0: प्रस्तुति
1: हैं।
0: आकाशवाणी बालतल के माध्यम से आप हमारा ये विशेष
1: के
0: प्रसारण सुन रहे हैं। आप तक पहुंच रहा है FM 103.7 MHz बालतल के चैनल से और पहलगाम के मार्ग से 100.1 MHz पर हम आपसे मुखातिब हैं। इसके अलावा देश विदेश में अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं आराधना चैनल मोबाइल ऐप न्यूज ऑनर के जरिए। इसके अलावा हम दस्तियाब हैं वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी। श्रोताओं, कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा बालतल में जो आधार शिविर है उसका दौरा करते हैं, उस हवाले से वो
1: पहले निश्चित
0: मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं,
1: आप
0: तक भी पहुँचाते हैं।
2: 7 दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा अमरनाथ की, आज 8वां दिन है। अब तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए, उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो भी यात्री आते हैं, कई दुकानें भी लगाई गई हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, होटल हो, गाड़ियां हो, इन सबको एक बड़ा साधन और एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर की जो टेंट, घोड़े, बाकी संसाधनों के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफी गति मिलेगी। मैंने टेंट खुद अपनी आंखों से देखा है, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं, काफी अच्छे इंतजाम टेंट में हैं, सुरक्षा का भी काफी ध्यान दिया गया, फायर एक्सटिंग्विशर हर टेंट में रखे जाए ये व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अच्छी यात्रा मानी जाएगी। हॉस्पिटल यहाँ 100 बेड के पिछले 3 सालों से फंक्शनल है, एक बालटाल में और एक चंदनबाड़ी में। एवरेज जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, मोटे तौर पर 1300-1400 मरीज रोज वहां आ रहे हैं आउटडोर। अभी जब मैं गया था तो 9 लोग भर्ती थे, माउंटेन सिकनेस थी, किसी को वोमिटिंग हो रही थी। मैं समझता हूं कि इन अस्पतालों के कारण यात्रियों को भी और यात्रा में काम करने वाले हमारे साथियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी सहायता मिल रही है। एक तो श्रद्धालुओं और यात्रियों से अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन ने और श्राइन बोर्ड ने बनाई है उस व्यवस्था का पालन करें। उनकी सहायता के लिए पूरा प्रशासन तत्पर है। कोई उनको परेशानी हो तो कैंप डायरेक्टर को या जो भी ऑफिसर लगे हुए हैं सुरक्षा बल के उनको बताएं, उनकी हर प्रकार की सहायता की जाएगी। कुछ दलाल किस्म के लोग हर जगह होते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। हर सुविधा के लिए, हर सर्विस के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, उससे अगर ज्यादा कोई भी चार्ज मांगता है तो उसकी शिकायत कैंप डायरेक्टर से या पुलिस को करें, तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की आवाज, जिन्होंने कल 10 जुलाई को बालतल आधार शिविर का दौरा करके अमरनाथ जी यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन, स्वच्छता और 24 घंटे पानी की सप्लाई को लेकर सख्त निर्देश दिए। LG मौसूफ ने स्पष्ट किया कि यात्रियों से अधिक पैसे वसूलने या किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ बिना किसी रियायत के तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बालतल आधार शिविर और चंदनवाड़ी में 100 बेड वाले अस्पतालों की सुविधाओं पर संतुष्टि जताते हुए इस यात्रा के लिए एक मुख्य सहारा बताया। जी हाँ, इसे यात्रा के लिए एक मुख्य सहारा बताया। ये जो अस्पताल 100 बेड वाले हैं, आपको बता दें कि ये DRDO की मदद से वहाँ स्थापित कर दिए गए हैं।

श्री मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपर राज्यपाल हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है बल्कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर जीवन स्तर में सुधार लाती है। और साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, उसके प्रोटोकॉल्स का पालन करने की भी अपील की। अंतर्यामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है कि तू। अनुराधा पौडवाल की आवाज़।

सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, भारतीय दर्शन का एक अति प्रसिद्ध सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदरता का सर्वोत्तम रूप है। यह शिव का अर्थ केवल भगवान शिव से ही नहीं बल्कि कल्याण मंगल सार्वभौमिक हित से भी है। भगवान शिव को इसलिए सत्यम कहा जाता है क्योंकि वो सत्य और निष्ठा के प्रतीक हैं। शिवम इसलिए क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि के कल्याणकारी हैं, और सुंदरम इसलिए क्योंकि उनका दिव्य स्वरूप बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके त्याग करुणा वैराग्य और लोक मंगल की भावना में बसा है। इसलिए जब हम सत्यम शिवम सुंदरम का उच्चारण करते हैं तो ये हमें सत्य कल्याण और अंतर की सुंदरता का मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विशेषकर श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र अवसर पर शिव भजनों का महत्व और भी श्रोताओं बढ़ जाता है। इन भजनों के माध्यम से देश और विदेश से आए श्रद्धालु अपने आप को बाबा बर्फानी की भक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये भजन केवल मनोरंजन नहीं होते बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का एक माध्यम भी होते हैं। आइए इसी पवित्र भाव के साथ अब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक मनमोहक शिव भजन। आशा है कि ये प्रस्तुति आपके मन को भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी।

विशेष प्रसारण जारी है। यात्रा 2024 के सिलसिले में आकाशवाणी के एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज और एफएम पहलगांव 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनने का। फिलहाल हम अपने इस भजन को यहीं पे विराम दे रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि समाचार के तुरंत बाद हम आपके लिए ये भजन फिर से पेश करेंगे। लेकिन इसी बीच हम तक जो ताज़ा अपडेट्स पहुंचे हैं अमरनाथ के हवाले से, दर्शन के हवाले से, तो आपको बता दें कि अभी तक कुल मिलाकर 16,523 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी है और उनका दर्शन प्राप्त किया है। यात्रा निर्विघ्न और उत्साह के साथ जारी है। अब आप सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। हम समाचार के उस पार अपने रिपोर्टर से बात करेंगे जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं। हमारे रिपोर्टर्स उनसे बात करेंगे और उनसे ताज़ा अपडेट्स भी लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, वो भी सुनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आकाशवाणी दिल्ली का रुख करते हैं समाचार के लिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का

0: 26 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तावुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आजाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैनुल अक्वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
1: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की समत एक संगे

0: मील है।
1: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफ लाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वज़रा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज़ रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इक्तिसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बाइस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तोखियानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में T20 बैनुल अक्वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीकर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मयामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. ब्रिक्स मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन 2026

मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हाँ, कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें,

0: भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं।

0: वहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई-बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: विशेष प्रसारण यात्रा 2026 के सिलसिले में प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप ये प्रसारण FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारा जो मुख्य दौर है भगवती नगर बेस कैंप का, जो वहां आधार शिविर मौजूद हैं, जहां हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं और वहां का क्या माहौल है, वहां के ताज़ा हालात, यात्रियों की गतिविधियों, मौसम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पल पल की जानकारी हमारे साथ वो साझा करते हैं। जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका इस

0: प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया आपका
0: जी स्वागत
1: पवित्र
0: स्वागत
1: श्री।
0: करते हैं आपका। जी जावेद, मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बताइए कि इस समय आप इस आधार शिविर में भगवती नगर के बेस कैंप में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, और वहाँ का वातावरण माहौल कैसा है और मौसम की जानकारी दीजिए हमें यहाँ, क्योंकि कश्मीर में अभी जो मौसम है वो अबरालूद है, आकाश में जो है बादल छाए हुए हैं।
1: जी यहाँ भी बादल और बादलों के साथ साथ बीच में सूर्य देवता भी अपने दर्शन दे रहे हैं, तो समझ लें आपके एक तरफ जो दर्ज हरारत है वो थोड़ा तापमान जो है वो थोड़ा बड़ा भी हुआ है, लेकिन साथ साथ अबरालूद भी है, बादल भी है और साथ साथ सूर्य देवता भी बीच में दर्शन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भविष्यवाणी है कि थोड़ा बारिश भी हो सकती है, लेकिन
0: जी
1: अभी तक तो नहीं हुई है, मगर जो टेम्परेचर है, जो अभी तक का तापमान है, वो लगभग कोई 34-35 के करीब, 35 से प्लस ही होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। यहाँ जो उमस है वही सबसे ज्यादा इस मॉनसून के मौसम में सबसे ज्यादा तंग करती है, सबसे ज्यादा थोड़ा तकलीफ देह होती है, लेकिन ये मौसम का अपना एक मिजाज है जिसमें उमस भी है, गर्मी भी है, मजा भी है, थोड़ा जोश भी है, वलवला भी है, और साथ साथ यात्रा भी अपनी यात्री और तीर्थ यात्री जो है जो यात्रा के लिए लगातार अपनी कोशिशों में, अपनी प्रक्रियाओं में लगे होते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है।
0: जावेद, उसी जोश को लेकर मेरा ये सवाल है कि जो उत्साह, जो वलवला, जो जोश पहले दिन भक्तों में पाया जाता था, क्या अब भी वही मौजूद है?
1: जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि हालांकि आज 10वां जत्था था आज तीर्थ यात्रा का, पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू के इस पहले निवास स्थान से बराबर अपने वक्त पर बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ घाटी की तरफ दोनों मार्गों के लिए लगातार बिना किसी बाधा के बराबर रोजाना हो रही है, और इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं प्रशासन के लिए, और इस बीच स्थानीय लोगों का और स्वयंसेवी संस्थाओं का, प्रशासन का एक साथ मिलकर, और साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक साथ मिलकर जो ये काम हो रहा है, एक साथ मिलकर जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम हो रहा है, उससे जो ये चैलेंज है वो एक बहुत आसानी के साथ निकल भी रहा है। प्रतिदिन जो है जोश बढ़ता भी है और उसके साथ साथ तीर्थ यात्रियों की संख्या भी कई बार बढ़ भी जाती है। आज भी तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी हुई थी और तीर्थ यात्री लगातार पहुंच भी रहे हैं। पहले दिनों में कुछ ज्यादा तीर्थ यात्री आ रहे थे, उसकी वजह से जहाँ लखनपुर का जो द्वार है जम्मू कश्मीर का, वो पार करते ही सांबा, विजयपुर, कठुआ, अलग अलग जगहों पर ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए ताकि एकदम एक ही जगह पर रश ना पहुंचकर तकलीफ ज्यादा ना हो, इसलिए रोका गया तीर्थ यात्रियों को। लेकिन अब जो है, अब अनुशासित तरीके से तीर्थ यात्री भी साथ साथ यात्रा के लिए रोजाना निकल रहे हैं, वही उसके जो दर्शन कर वापस लौट रहे हैं वो भी अनुशासित तरीके से वापस, जहां वाहनों से वही रेल के माध्यम से भी बराबर यहां से जा रहे हैं। तो एक अच्छा एक अनुशासन बना हुआ है और उसमें कहीं किसी लेवल पर कुछ कमियां भी जरूर है, लेकिन उनकी समीक्षाएं भी रोज हो रही हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए प्रशासन और जो दूसरे लोग यात्रा के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से उसको, उन कमियों पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जैसे बता रहा था कि आज 10वां जत्था बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ घाटी पहुंच गया है, इसी तरह लगातार बालटाल से भी तीर्थ यात्रियों के जत्थे दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, और यहाँ जम्मू पहुंचने के साथ ही श्रद्धालुओं की घर वापसी के लिए जहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा जा सकता है, वहीं बसों, निजी वाहनों में भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बड़े खुशियों और उल्लास के साथ वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। तो जगह जगह पर इस बीच जो है जगह जगह पर लंगरों की व्यवस्था भी है, और जहाँ शहर के देसी व्यंजनों के अलावा मशहूर नॉर्थ साउथ इंडियन जो बड़ा पसंद किया जाता है यहाँ जम्मू शहर में, तो वो भी साथ साथ इन व्यंजनों के साथ उसका भी लुत्फ ले रहे हैं श्रद्धालु। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंगरों में अलग अलग चीजें होती हैं, और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। कुछ तीर्थ यात्री जो है वो पुराने शहर के

0: बाजारों में जाकर वहां के व्यंजनों का भी लुत्फ ले रहे हैं। तो पूरे शहर में समझिए आपकी एक तो नया शहर जो तवी के दूसरे तरफ है और तवी के इस तरफ जो पुराना शहर है इस तरफ भी तीर्थयात्री कुल मिलकर चौक चौराहों बाजारों में देखे जा सकते हैं। और जम्मू में जैसे आपने आपको मैंने पहले कहा कि मानसून की भी आमद है और यहाँ का मौसम जहाँ गर्म रहता है वहीं नमी के कारण थकान और मौसम की वजह से कई बार कुछ बीमारियां जैसे समझ लें आपकी छोटी मोटी मौसम की जो बीमारियां होती है बुखार जुकाम पेट का खराब होना श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है क्योंकि हजारों तीर्थयात्री लगातार इन ट्रांजिट कैंप्स में और मुख्य रूप से जो यहाँ तवी के ऊपर तवी रिवर फ्रंट के ऊपर जो मुख्य ट्रांजिट कैंप बनाया गया है इसी तरह भगवती निवास में भी। लेकिन वहाँ इस बीच श्रद्धालुओं के लिए आस्था अस्पताल भी बनाए गए हैं जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल है मुफ्त दवाइयाँ अवेलेबल है और श्रद्धालुओं को बाजाबता चिकित्सा और मुफ्त दवाएं बराबर मिल रही हैं और अभी तक लगभग 3,000 से ज्यादा मरीजों का उपचार भी किया जा चुका है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक तो श्रद्धालुओं के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर गांधीनगर और जहां भगवती नगर और तभी रिवर फ्रंट पर जो बनाए गए जो अस्पताल हैं आस्था अस्पताल उनमें जहां चिकित्सा मुफ्त है वहां दवाएं भी बाजाबता तीर्थयात्रियों को दी जाती है और खास तौर पर डॉक्टरों की तरफ से तीर्थयात्रियों को खाने पीने और ज्यादा थकान ना करने की एडवाइस दी जाती है ताकि जो तीर्थयात्री इस कठिन सफर के लिए निकलना चाहते हैं उनको बाजाबता ये बताया जाता है कि मौसम की क्या होती है अपनी एक जरूरत क्योंकि वादी का मौसम अलग है जम्मू का मौसम अलग है तो अलग अलग जगहों पर जब वो वापस अपना पहुंचेंगे उन पहाड़ियों के बीच जहां उन्हें बालटाल के रास्ते पहलगाम के रास्ते वहां का मौसम अलग है इसलिए उनको जरा एडवाइस किया जाता है गाइडलाइन किया जाता है। योग जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ डॉक्टरों के लेवल पर बल्कि यहाँ इन जो ट्रांजिट कैंप्स है वहाँ योगा सेंटर्स है वहाँ अलग अलग गाइडलाइंस जो दी जाती है रोज एक तो अनाउंसमेंट्स की जाती है उसके अलावा अलग से जो लोग सुबह की तैयारी के लिए जा रहे होते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी जाती है कि किस तरह से किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है ताकि जो ये यात्रा है उनके लिए आसान भी हो सुखद भी हो और वो अच्छी सेहत के साथ इस यात्रा को पूरी भी करें। तो वही तीर्थ यात्रा को सुचारू चलाने के लिए जहाँ बड़े स्तर पर समीक्षाएं हो रही है वही छोटे स्तर पर भी बेहतर सुविधाओं का आकलन किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाओं के अलावा उनके स्वास्थ्य आसपास के माहौल को स्वच्छ रखा जाए जिसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल टीमें अलग अलग इन जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत मेहनत के साथ काम भी कर रही हैं और किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल जो है जो अस्वच्छ हो उस ऐसा ना हो उसके लिए बराबर 2400 घंटे सुबह शाम सफाइयां होती है लंगरों के आसपास भी ट्रांजिट कैंप्स में भी और खास तौर पर बिजली पानी का ख्याल रखा जाता है फैंस का ख्याल क्योंकि गर्मी भी है उमस भी है तो तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की ज्यादा थकान ना हो और उन्हें एडवाइस भी दिया जाता है कि ज्यादा थकान ना करें बल्कि रेस्ट भी करें जिन्हें जाना होता है जो वापस लौट के आ रहे हैं उनके लिए घर के जाने की जरूरत जाने की जल्दी भी होती है और इसके अलावा जिन्हें शहर देखना है उनके लिए अलग तरह से अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरें यहाँ के पर्यटन स्थल उसके लिए भी अलग अलग एक तरह से इंतजाम किए गए तो कुल मिलाकर यात्रा का एक अलग एक अनुभव होता है हर एक यात्री के लिए। जी
1: जावेद भगवती नगर के इस मुख्य दौर से इस विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमसे जुड़े थे इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस विस्तृत जानकारी के लिए। निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। श्रोताओं सावन का महीना प्रकृति को एक अलग ही रूप दे देता है जैसा कि जावेद अभी कह रहे थे। इस दौरान वातावरण में आराद्रा यानी नमी का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण जो है जिसके चलते जो है मौसम कभी धूप तो कभी बादलों की छाओं का एहसास कराता है। हालांकि नमी अधिक है लेकिन यात्रा का जो उत्साह है और श्रद्धालुओं की आस्था जो है उसमें कोई कमी नहीं है। सीधा रुख करते हैं अब नुनवन बेस कैंप्स का जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एस तारिक। जी एस तारिक क्या विवरण देना चाहेंगे

0: नुनवन बेस कैंप से।
1: हाँ बिल्कुल जी, मैं यही कहूँ कि अभी जो मौसम की जो मैं जानकारी आपको दे दूँ, मौसम बहुत ही पुरफिजा है, बहुत खुशगवार है। यात्री जो है अभी सफर बिल्कुल उचित से जारी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो अभी हाल में बता दूं कि जो सुबह को निकले यानी मध्यम हवाओं और सुहाने मौसम के बीच आज जो चंदनवारी से हजारों यात्री ने पवित्र गुफा के ओर अपना रक्त सफर बांधे हुए शेषनाग और पंचतरणी में प्रवेश किया है। और इस प्रकार शेषनाग और पंचतरणी में रात को ठहरे श्रद्धालु बाबा बर्फानी पवित्र गुफा में मौजूद शिवलिंगम का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार दर्शन से लौटने वाले सैकड़ों यात्री जो नुनवन बेस कैंप में मौजूद थे आज सुबह जम्मू के जानिब रवाना हो गए।
0: जी
1: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई से कल शाम तक बाबा बर्फानी के द्वार दर्शन करने वाले भक्तों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। रिपोर्ट फाइल करने तक यानी 1 बजे तक मैं आपको बता दूं कि आज 16,523 यात्री दर्शन प्राप्त कर चुके और ये सिलसिला अभी जारी है।
0: जी
1: इस बीच जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 9,182 यात्रियों पर मुश्तमिल 10वां जत्था डेजर्ट कैंप काजीगुंड से होते हुए बालतर और पहलगाम पहुंच चुके हैं। इनमें से पहलगाम की प्राचीन की जब बात करूं तो उनके लिए 206 छोटी बड़ी वाहनों में 5,877 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम प्रवेश कर चुके हैं। इनमें से 4,232 पुरुष, 1,398 90 साधु, 38 साध्वी, 14 बालक और 5 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। यात्रा प्रशासन की जानिब से भक्तों के लिए तमाम सुविधा प्रदान कराई गई है। सुरक्षा से लेके सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। घाटी में मौजूद दाखिल होते ही नयोग टनल काजीगुंड से पहलगाम तक 3 दायरों वाली सुरक्षा का जो बंदोबस्त है पूरा किया गया है। यानी आप कैंपों की बात करें तो कैंपों में लंगर और हाइजीनिक खाने पीने की व्यवस्था भी रखी गई है, जबकि आराम और क्याम के लिए वाटरप्रूफ टेंटों यानी खेमों और दूसरी चीजों का इंतजाम बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है ताकि बिगड़ते मौसम में किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम प्राचीन मार्ग पहलगाम की बात करें तो मौसम का बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। तो मौसम के विभाग की सूचना के मुताबिक यात्रा ट्रैक में मौसम इस वक्त खुशगवार बना रहेगा। इस वक्त पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक मौसम मुकम्मल तौर पर साफ है। पहलगाम की कई पहाड़ियों से ठंडी हवाएं जरूर आती है लेकिन वो मजीद सफर को शांतपूर्ण बना रहे हैं। इस वक्त वातावरण में जो तापमान है जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। जी
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत धन्यवाद।
0: नुनवन बेस कैंप से हमारे साथ जुड़े हुए थे एस तारिक, जो विवरण दे रहे थे कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, नुनवन बेस कैंप में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, यात्रा को लेकर। श्रोताओं, अभी हम जो बात कर रहे थे उमस की, जो उमस पाई जा रही है इस सावन के मौसम में, ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। पर्याप्त जल आप पीते रहें और प्रशासन द्वारा जारी जो सलाह है उनका पालन करते रहें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं। हम अब रुख करना चाहेंगे हमारे गांदरबल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रहीम रिजवान की ओर। वो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रिजवान, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की यात्रा के हवाले से?
2: धन्यवाद आपका। इस वक्त मैं जुमेल कंट्रोल गेट बालचल बेस कैंप पे मौजूद हूँ
0: जी।
2: और देश के विभिन्न भागों से आने वाले बड़ी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालचल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। और यहाँ त्योहार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है पूरे बालतल के क्षेत्र में। और व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिला प्रशासन गांधरबल ने श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और लंगर वाले सेवादार जो हैं वो बाजार तौर जो श्रद्धालु दर्शन करके वापस आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और इनका यही मानना है कि सेवा करने से बाबा बर्फानी के भक्त जो है उनकी सेवा करने से इनकी मन को शांति मिल रही है। बहरहाल हमारे साथ एक मित्र जुड़े हैं सेवादार, इनसे बात करेंगे और अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं आज भोजन के लिए या दीगर चीजें जो है। और आमिर, मैं आपको ये भी बताते चले कि इन्होंने बहुत सारे अकसाम की मिठाइयाँ जो चंडीगढ़ की है वो यहाँ पे हमारे श्रद्धालुओं के लिए मैसर रखी है। आदाब जी।
3: हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करना चाहता हूँ और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन

0: का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 2026 की इतनी बड़ी सुलभ यात्रा बनाई है। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर इतनी अच्छी यात्रा सफाई, विशेषकर स्वाहा जो कंपनी लगा रखी है, बहुत सुंदर यहाँ पर जो सफाई स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था उसकी निमित्त बहुत सुंदर है। और वही गौरी शंकर सेवा दल जो पिछले विगत वर्षों से 18 वर्षों से अमरनाथ बाबा बर्फानी में विशाल भव्य भंडारा लगा रहे, जिसमें हमको सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन विशेषकर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पर आप इस बार गौरी शंकर सेवा दल ने एक ही लक्ष्य है, पिछले बार मिठाई थे, इस बार हमने कम से कम 32 प्रकार की मिठाई जिसको हमने बढ़ाकर 56 प्रकार की मिठाइयां कर दी है, 56 प्रकार मिठाइयों का आनंद लेते हुए। और साथ में हमने इस बार जो पेस्ट्री बना रखी है भक्तों के लिए विशेष पेस्ट्री है। और एक हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि जिस किसी यात्री का जन्मदिन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, वो बाबा बर्फानी के पावन चरणों में उसका बड़े धूमधाम से यहाँ पर जन्मदिन मनाते हैं और जन्मोत्सव के रूप में वहाँ पे भव्य यहाँ पे कार्यक्रम होता है। और बहुत सुंदर यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रखे उनके लिए विशेष सेवा का प्रबंध यहाँ पे की गई है, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो इस प्रकार की यहाँ पर सुचारू रूप से सेवा की गई है। और हमारे साथ हमारे अरुण शर्मा जी है और संजय सूरी जी है, बबलू जी है, अमन जी है, सारी सेवादार यहाँ पर सेवा तत्पर रहते हैं।
1: संजय जी आप हमें बताइए कि जो ही आप इन बाबा बर्फानी के भक्त जो दर्शन करके वापस आते हैं उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी थकान दूर करते हैं, तो कितनी शांति मिलती है?
2: बहुत सुख मिलता है हमें, हम यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं और उनकी हर अपने तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, जो हमारे को अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है।
1: तो मुझे बताइए ये पूरा क्षेत्र जो है काफी पवित्र माना जाता है, इसकी सफाई सुथराई के लिए किस तरह के इकदाम करने की जरूरत है?
2: सफाई के लिए जी जो आपने सेवा लगी हुई है सारे ठीक है, अच्छी सी सफाइयाँ हो रही है, साफ सुथरा है, ठीक है जी, सारा कुछ बढ़िया।
1: तो जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं क्या उनको चाहिए कि यहाँ की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें?
2: हाँ जी हाँ जी, जैसे प्लास्टिक का ख्याल रखे कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक का सामान है, उसको डस्टबिन में ही डाले, इधर उधर कहीं ना फेंके।
1: तो मुझे बताइए जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं यहाँ रखी हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं इस वर्ष?
0: गांधरबल जिला प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, मन को बहुत प्रसन्न है, विगत के कई वर्षों से इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जो इस बार जिला प्रशासन बहुत अच्छी सुविधा करके है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अमरनाथ जो ट्रैक है जहाँ पे यात्री जाते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा अमरनाथ श्राइन बोर्ड जिला प्रशासन के जो भी अधिकारियों ने वहाँ पे जो भी सोच रखा है, वहाँ पे जो बैरिकेड बना रखा है जो कोई घोड़ा नीचे ना गिरे या पहाड़ों पर NDRF कोई भी, यहाँ पर बहुत ही सुलभ व्यवस्था कर रखी है। सफाई की बात करें स्वच्छता अभियान के तहत गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई है। उन्होंने सफाई के मार्ग में जरा डस्टबिन लगा रखा है सैनिटाइजर के लिए और इनके कर्मचारी लगे हुए, बहुत बहुत बधाई इनको सफाई के उपलक्ष्य में।
1: मुझे बताइए सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध किए गए?
0: सुरक्षा में भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छी सेवा है, आर्म फोर्सेस से इस बार जवान यहाँ पे जगह जगह पर तैनात है, CRP NDRF BSF और JK पुलिस का भी बहुत धन्यवाद है, जो अच्छा है। इस बार व्यवहारिक सबके साथ यात्री का कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 3 तारीख जो यात्रा शुरू हुई है आज 1 हफ्ता हो गया है और यात्रियों का उत्साह भी है। बाबा बर्फानी फिर भी अंतर ध्यान हुए, फिर भी बाबा के उत्साह में आ ही रहे हैं क्योंकि आस्था का केंद्र है और भगवान भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ ताला चाबी नहीं है, अमरनाथ बाबा बर्फानी। इस अमरनाथ बाबा बर्फानी के चरणों में हम लोग सभी धन्य है कि जो 150 करोड़ आम जनमानस में हमको बाबा बर्फानी सेवा के लिए चुना है, हम लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि जो बाबा बर्फानी की सेवा के लिए हर साल आते हैं।
1: जी आमिर, हमने श्रद्धालु से भी बात की है जो बाबा बर्फानी का दर्शन करके वापस भारत तक पहुंच रहे हैं, काफी थके हुए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट थे और उनका यही मानना है कि अंतर्ध्यान होने के बावजूद भी जो यात्री है वो बड़ी मात्रा में यहाँ, लाखों की संख्या में यहाँ बादल बेस कैंप पहुंच रहे हैं और पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करते हैं। अपने श्रोताओं को हम ये भी बताते चले कि गुज़श्त 9 दिनों के दौरान 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देश के विभिन्न भागों से यहाँ पहुंचे हैं और जिन्होंने शिवलिंगम का दर्शन किया, देश एवं घाटी की शांति तथा विकास के लिए दुआएं मांगी। जी
3: रिजवान, आपकी इस कोशिश और काविश को हम सराहते हुए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका भी।
3: गांधरबल से हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहीम रिजवान हमसे जुड़े थे। श्रोताओं, ये जो अमरनाथ जी की यात्रा है, केवल हम बार बार कहते हैं कि आस्था ही आस्था की ही यात्रा नहीं है।

बल्कि आपने महसूस किया होगा कि ये सेवा और समर्पण का भी एक अनुपम पर्व है। यात्रा के दौरान कई ऐसे सेवाभागी लोग हमें मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं। आज हमारे संवाददाता रहीम रिजवान के साथ चंडीगढ़ से आए एक ऐसे ही सेवाभागी व्यक्ति जुड़े थे। इनका कहना है कि मैं हर वर्ष मिठाई लेकर आता हूँ, इतना ही नहीं यात्रा के दौरान जिस किसी

0: आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं?
1: सर जी, मैं ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से सुन रहा हूँ आपको। सर जी, हम नियमित रूप से आपका कार्यक्रम डीटीएच पर सुनते हैं,
0: जी
1: और कार्यक्रम में अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ मिलती है, वहाँ की खबरें मिलती है कि किस प्रकार से यात्रा सफल हो रही है यात्रियों की, श्रद्धालुओं की। सर मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि वहाँ का आंखों देखा हाल आकाशवाणी बाल के माध्यम से हमें घर बैठे सुनने को मिल रहा है। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है, और एक से बढ़कर एक भजन भी सुनने को मिलते हैं हमें दिन भर।
0: अरे बताइए, क्या आप कभी अमरनाथ जी यात्रा पर गए हैं?
1: सर अभी तो नहीं आया हूँ, मैं गया नहीं हूँ,
0: कोई
1: और
0: ऐसा प्लान
1: अभी
0: आगे का कि आप बाबा के दर्शन करें, आगे आपका कोई शौक नहीं है ऐसा?
1: नहीं। सर यात्रा करने का तो बहुत शौक है, जब बुलावा होगा बाबा बर्फानी का, जब आएंगे जरूर, यात्रा तो करना है, बाबा के दर्शन करना है। सर मुझे तो बाबा का नाम ही बहुत प्यारा लगता है, और सुमिरन यही से घर से ही उनका स्मरण करते, याद करते हैं, और जो भी हमारे दुख है उनको मन ही मन उनको कहते हैं कि बाबा सब अब दुख दूर करे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय बाबा बर्फानी की।
2: एक श्रोता के विचार आपने सुने।

0: जो है एक श्रोता के विचार आपने सुने। इस वक्त हम संपर्क में हैं मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार अहमद से। मुख्तार साहब, खैर मकदम करते हैं आपका।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बताइए मुख्तार साहब, हमारे श्रोताओं को जो देश विदेश में हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे मौसम के हवाले से? जो पवित्र गुफा में जो मौसम है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है और जम्मू की क्या स्थिति रहने वाली है?
1: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था, आज थोड़ा सा मौसम ओवरऑल रहेगा और अभी खासकर दोपहर के बाद कुछ एक जगहों पे बारिशें हो सकती है, खासकर बालताल से लेके होली केव तक और इसी तरह पहलगाम एक्सिस में भी, खासकर पहलगाम से लेके होली केव तक। तो आज इवनिंग तक थोड़ी सी बारिशें होने के चांसेस है और इसी तरह कल भी, कल खासकर मॉर्निंग में एक बार फिर बारिशों की पॉसिबिलिटी है दोनों एक्सिस में, बालताल से लेके होली केव तक और इसी तरह पहलगाम से लेकर होली के तक भी। कल दिन में भी मौसम थोड़ा सा बरालूद रहेगा, बारिशों का एक दो स्पेल हो सकता है सुबह से और फिर परसों से जो है मौसम ठीक है, कल शाम से ही बेहतर होने के चांसेस हैं। फिर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड मौसम जो है पूरी तरह बेहतर होने के चांसेस हैं दोनों एक्सिस के दौरान।
0: तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि आगे का जो मौसम है वो अच्छा सुहाना रहने वाला है, क्योंकि हम इसलिए बार बार आपसे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि एकमात्र जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44, उस पर हम निर्भर होते हैं। अगर उसमें कोई बाधा आती है तो फिर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। आप सब इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं।
1: जी बिल्कुल, अभी बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इनमें भी बारिशों के चांस हैं, खासकर आज दोपहर भी और कल दिन में भी एक दो स्पेल हो सकते हैं। तो बारिशें रहेंगे लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड मौसम जो है फिर से इम्प्रूव होगा और थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है रहने के चांस हैं टिल 18th of July तक।
0: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ह्यूमिड वेदर में आप भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें पानी का इंटेक ज्यादा करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, पानी वगैरह ले, फ्लूड वगैरह पिए और उसके साथ साथ अभी कल जैसे मौसम थोड़ा सा खराब है सुबह से, तो थोड़ा सा गर्म कपड़े वगैरह अपने साथ ले, हल्का लाइट जैकेट या लाइट स्वेटर टाइप, क्योंकि आज भी थोड़ा सा मौसम अबरालूत रहा, शाम के टाइम बारिशें हैं, कल भी वक्त वक्त से एक दो स्पेल होंगे तो टेम्परेचर में भी थोड़ा सा गिरावट देखा जा सकता है, खासकर जो ऊपरी हिस्से हैं
0: जी,
1: आगे बरारी मार्ग से लेकर संगम चिरवली के तक, या दूसरे एक्सिस अगर हम देखेंगे शेषनाग पंचतरणी और होली के तक, ये जो ऊपरी हिस्से हैं यहाँ पे दर्जा हालत में भी थोड़ा सा गिरावट देखा जा सकता है खासकर कल।
0: चलिए, आशा करते हैं कि मौसम अच्छा हो और भक्तों की जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। मौसम विभाग के निर्देशक जो श्रीनगर में, मौसम विभाग के हमारे निर्देशक हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, उनकी सलाह और उनकी प्रेडिक्शन आपने सुनी कि मौसम की क्या स्थिति होने वाली है आगे के दिनों में। और इनका कहना है कि मंडे से जो है, सोमवार से जो है, मौसम जो है वो अच्छा रहने का इम्कान है, अच्छा रहने की आशंका है। फिलहाल हम रुख करना चाहेंगे

0: जी हाँ, भजन का अगला हिस्सा ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल विवरण लेके श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नायको। जी इमरान।
1: जी बिल्कुल, आज भी अमरनाथ जी यात्रा को लेके श्रीनगर शहर में काफी सारे या काफी अच्छी जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और आज भी यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। जिस तरह से हमने सुबह भी अपडेट किया था कि अमरनाथ जी यात्री, जिसमें मरद खवातीन और कुछ साधु साध्वी भी शामिल थी, और साथ ही कुछ बच्चे भी थे जिन्हें अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए रवाना यहाँ से किया गया, और साथ ही अभी जो है यहाँ एक जत्था पहुंचा है जो यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, और कल सुबह उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। मजमूई तौर पर आज श्रीनगर में चूंकि मौसम अब्र आलूद है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मौसम साजगार रहा, ठंडी हवाएं भी चल रही है इस टाइम भी, और अमरनाथ जी यात्रियों की आमद और रवानगी का जो सिलसिला है वो एज यूजल जारी है, और आज भी यहाँ ऑफिशल्स ने ट्रांजिट कैब का विजिट करके यहाँ यात्रियों के साथ बात की है, और ओवरऑल उन्होंने यहाँ रिव्यू लिया है और फीडबैक भी हासिल किया है, और कई सारे यात्रियों से आज सुबह हमारी भी बात हुई थी और उनसे फीडबैक जाना था अरेंजमेंट्स को लेके, और साथ साथ जो यात्रा को लेके जो माहौल है इस पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, और बहुत से यात्री जो कई सालों से यात्रा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, खासकर उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि हर गुजरते साल के साथ, और किसी कोई 5 साल से यहाँ पे आ रहा है, कोई 3 साल से, या किसी ने पिछले कई सालों से यहाँ पे आके अमरनाथ जी यात्रा की है, तो एक डिफरेंट तरीके से वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और यही कहना है उनका कि काफी सारी चेंजेस आई है, वो चाहे यात्रा ट्रैक्स को लेके हो, वो चाहे यहाँ जो ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं, या फिर बाकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है उनको लेके। सो यहाँ श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में भी हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं, और सुबह उनको अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र दर्शन के लिए, इसको पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जा रहा है, और इस सिलसिले में आज भी यात्रियों को रवाना चूंकि किया गया, वहीं बहुत सारे यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, और साथ साथ यात्रियों के लिए लंगर का यहाँ पे एहतमाम किया गया है, यात्रियों के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, और साथ ही सैनिटेशन का बेहतर निज़ाम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, और इसके अलावा यहाँ कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, या जो कुछ यहाँ की जो लोकल सनत है या क्राफ्ट जो यहाँ का प्रोडक्ट्स है वो उसकी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि यात्री जो है जाके खरीदो फरोख्त भी करें, और जिसका कल भी हमने कहा था कि एलजी साहब ने जो 2 दिन पहले यहाँ विजिट कर किया था तो उसमें उन्होंने अपील भी की थी यात्रियों से कि यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है, हैंडलूम है।

आपकी यात्रा को और अधिक या सुरक्षित बना सकती है। जैसा कि इमरान ने भी कहा कि स्थानीय लोगों के बिना ये यात्रा जो है वो मुमकिन ही नहीं है। इस अमरनाथ जी की यात्रा की सफलता में स्थानीय लोगों का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उनकी मेहमान नवाजी, सेवा भावना और सहयोग के बिना इस विशाल यात्रा की कल्पना करना कठिन है। जी हाँ श्रोताओं, चाहे घोड़े और पालकी सेवा से जुड़े लोग हों, स्थानीय व्यापारी, लंगर सेवक या अन्य सहायक कर्मचारी हों, सभी जो है वो अपनी अपनी भूमिका को पूरी जो है निष्ठा के साथ निभाते हैं। वो केवल रोजगार का माध्यम ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सहायता को भी अपना कर्तव्य मानते हैं। यही परस्पर सहयोग, अपनापन और सेवा का भाव श्री अमरनाथ जी यात्रा को एक अनोखा और यादगार अनुभव बनाता है।

0: जी हाँ भजन आप ज़रूर सुनेंगे। फ़िलहाल हमारा राबिता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहम्मद तस्कीन का। जी तस्कीन, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी शुक्रिया। जो श्री अमरनाथ यात्रा के आज दोनों जो काफले थे वो अपने अपने मंजूर के यानी बानहा रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो सुबह जो काफले जम्मू से आज 9182 यात्री थे 333 गाड़ियों में दोनों जो बालतल और पहलगाम के मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं पवित्र गुफा की तरफ, तो उनको सुबह करीबन 11:30 के आसपास इनको क्रॉस कराया गया कश्मीर की तरफ। यहाँ पर जो बानहाल में इनका ब्रेकफास्ट होता और एक जो काफला जो बाल पहलगाम का होता तो उनका चंद्रकूट में होता और बालतल वालों को यहाँ बानहाल में रोका जाता है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। इस दौरान जो वापस जो दर्शन करके काफले आ रहे हैं तो उसमें एक बड़ा काफला आज बालतल से वापस आया जिसमें 4,788 यात्री 153 गाड़ियों में सवार थे और करीबन 2 बजे के आसपास ये रामबन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जम्मू की तरफ रवाना हुए, जबकि बालतल का काफला भी इससे पहले कुछ वक्त पहले जम्मू की तरफ रवाना हुआ। आज मजबूत और सुबह से ही पूरे जो राष्ट्रीय राजमार्ग का ये रामबन बानहाल का स्ट्रेच है इसमें बादल है, धूप भी निकल रही है बीच में, लेकिन जो मैक्सिमम जो वक्त रहा उसमें बादलों ने ही घेरे रखा पूरे जो आसमान को, तो इस वक्त भी बादल और हल्की हल्की हवाएं चल रही है। हालांकि रामबन में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है क्योंकि बहुत जो टेम्परेचर वहां बढ़ जाता है, अगर वहां पर बादल भी तो उस सूरत में भी लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस होती है। और उसके अलावा जो यहाँ बानहाल एरिया में तो यहाँ पर उमूमन जो मौतदिल मौसम ही होता तो आज भी वही है और पिछले 6-7 दिनों से हम विटनेस कर रहे हैं कि मौसम मजमूई तौर पर यहाँ खुशगवार ही रहा और जो यात्री आ रहे हैं तो वो मौसम की भी जहाँ इंतजाम की जो किए गए हैं उनके लिए सिक्योरिटी के खाने पीने के बाकी जो भी हेल्थ इश्यूज जो भी उनको ट्रीट किया जा रहा है तो सबको लेकर वो खुश हैं, तो लेकिन मौसम के बारे में भी जो यात्री लोग हैं वो ज्यादातर छोड़ पर इसका भी ये जो मतलब शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का कि जो मौसम है उनको बहुत जबरदस्त खुशगवार मौसम है, पूरे कश्मीर तक उनको ऐसी सुरथाल का सामना है खुशगवार मौसम का सामना है। इस दौरान आज हाईवे पर 2 बसें भी जो जम्मू से कश्मीर की तरफ आ रही थी यात्रा की तो उनमें भी जो खराबी पैदा हुई खराब हो गई 2 गाड़ियां, क्योंकि ये मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश है बाकी जो रियासतों से आती है गाड़ियां तो उनका जो यहाँ के रूट्स जो उनके रूट्स वहाँ प्लेन्स है यहाँ पर थोड़ा हिली एरियाज होता है तो उस वजह से पिछले अगर हम 7-8-9 दिनों में देखेंगे क्या 10वां काफला था तो अगर इसमें देखें तो 5-8 गाड़ियां खराब हो चुकी है बसें, लेकिन जो इंतजाम है एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर हुकूमत है उन्होंने उनके लिए साथ साथ में स्टैंड बाई पर गाड़ियां रखी हुई है, बैकअप रहा है पूरा बसों का, तो इन दोनों बसों को वहीं छोड़कर जो यात्री इनमें थे एक में करीबन 38-40 के करीब थे और दूसरे में भी इतने ही तादाद में तो उन्हें यहां से उन गाड़ियों में दूसरी बसों में सवार करके वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। फिलहाल मौसम खुशगवार है और जो ट्रैफिक 11:30 बजे के बाद कश्मीर से यात्रा निकलने के

0: छोड़ा जाता है मुसाफिर ट्रैफिक वो इस वक्त जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, जबकि जो जम्मू से सुबह 7 बजे के बाद जम्मू से ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है कश्मीर के तरफ, तो वो ट्रैफिक भी मजलू की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान जो 3 बजे के बाद बहरहाल टनल से गाड़ियां रोकना शुरू हो गई, इनमें वो गाड़ियां हैं जो टूरिस्ट से और वो गाड़ियां हैं जो यात्री हैं, चाहे वो गैर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको वहां रोका जाता है। 3 बजे के बाद किसी भी यात्रा गाड़ी को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और कल जो करीबन 550 के करीब लोग जो यहाँ बानहाल में ठहरे थे, जो मतलब 3 बजे के बाद यहाँ पहुंचे थे, आज उन्हें बाजाबता तौर की सुबह सिक्योरिटी के कवर में भेजा गया और जो आज ये रोके जा रहे हैं 2 बजे बाद चंद्रकूट में और 3 बजे बाद बानहाल में, जो भी यात्रा कश्मीर की तरफ जा रहे, जो भी टूरिस्ट कश्मीर की तरफ है, उनकी गाड़ियों को रोका जाता है और इनको रात का कयाम यहीं कराया जाएगा। वहाँ इंतजाम है, दोनों यात्रा साइट्स जो है लंगर साइट से बानहाल में भी और चंद्रकूट में भी रहने खाने पीने का और बाकी जो चिकित्सा वगैरह का सब इंतजाम रखे हैं सरकार की तरफ से, तो वो रात गुजारेंगे यहाँ। तो सुबह उनको भी एक सिक्योरिटी कवर में सुबह 6 बजे के करीब उनको पहले ही यात्रा से पहले ही निकाला जाता है, तो कल भी ये रूटीन में जो सिलसिला है ये जारी रहेगा।
1: धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बानिहाल से राष्ट्रीय राजमार्ग की अपडेट दे रहे थे मोहम्मद तस्कीन। 2 बजे तक का दर्शन अपडेट हम तक पहुंचा है। 18,785 भक्तों ने बाबा बर्फानी की यात्रा की है, ये आज दिन की संख्या हम 2 बजे तक की आपको बता रहे हैं। 18,785 भक्तों ने बाबा भोले के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, अमरनाथ जी यात्रा में श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने जो है मुख्तलिफ एजेंसीज लगा रखी हैं, सुरक्षा बल, चिकित्सा दल और सेवा में लगे स्वयं सेवक निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन कर रहे हैं। यात्रा के दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही जो है व्यवस्थित ढंग से जारी है। मौसम में नमी और बादलों की आवाजाही के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने एक बार फिर श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो मौसम की जानकारी पर नज़र रखें, अतिरिक्त मार्गों का ही उपयोग करें और जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

जी हाँ, भक्तों पर बाबा बर्फानी की जो मेहर है वो बनी है। इस वक्त का दर्शन अपडेट, 3 बजे तक का दर्शन अपडेट हम तक पहुँचता है। कुल मिलाकर 21,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। यह आज दिन की संख्या है। 21,000 यानी 20,973 भक्तों ने बाबा भोले के पवित्र गुफा में हाजिरी दी है और उनका दर्शन प्राप्त किया है। इनमें पुरुष 14,240, महिलाएं 6,174, बालक 168, साधु 138, साध्वी 8, ट्रांसजेंडर 10 और सिक्योरिटी के अहलकार 235 शामिल हैं। कुल मिलाकर 2,973 भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ यात्रा आज दिन में जो है वो मुकम्मल की है।

0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

जी हाँ, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, ये तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से हम अपडेट लेके आए हैं आपके लिए, 4 बजे तक का दर्शन अपडेट। 22,836 यात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उनका दर्शन प्राप्त किया है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक अनोखा अनुभव है। हर साल देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के आने से ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि पूरा यात्रा मार्ग जो है साफ सुथरा रखा जाए, प्रकृति का संतुलन बना रहे और पवित्रता पर कोई आंच ना आए। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का काम बेहद अहम हो जाता है। कचरे का सही तरीके से संग्रह, उसका निपटान, यात्रा मार्ग पर सफाई और यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, ये सब मिलकर यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सोहा रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल बहुत अहम होता है। हर रोज हजारों यात्री बालटल और पहलगाम रूट से गुजरते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए कंपनी के ट्रेनड सैनिटेशन वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और फील्ड टीम्स

लगातार काम करते हैं। डस्टबिन्स लगाना, कचरा इकट्ठा करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल का पूरा सिस्टम पहले से तैयार किया जाता है। सोहा सोर सेग्रीगेशन पर भी जोर देती है। इसका मतलब है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके और लैंडफिल पर काम कम से कम बोझ पड़े। ये तरीका वातावरण को बचाने के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। यात्रा के दौरान कंपनी का एक और मकसद यात्रियों को जागरूक बनाना भी होता है। वॉलंटियर्स और स्टाफ लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लास्टिक या दूसरा कचरा रास्ते में न फेंकें। ये हम भी बार बार आपसे निवेदन करते हैं, पवित्र जगह है, इसको पवित्र ही रखें। डस्टबिन का इस्तेमाल करें और पवित्र गुफा के आसपास सफाई का खास ख्याल रखें। इसी तरह सफाई सिर्फ स्टाफ की नहीं बल्कि हर यात्री की जिम्मेदारी बन जाती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम अक्सर अचानक बदल जाता है। वर्षा, फिसलने वाले रास्ते और मुश्किल टेरेन के बावजूद सैनिटेशन टीम्स अपनी ड्यूटी निभाती रहती हैं। इसके लिए उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव गियर और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि काम भी बेहतर हो और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। सोहा अपने काम में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है। कई प्रोजेक्ट्स में GPS एनेबल्ड व्हीकल्स, डिजिटल मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम्स के जरिए सफाई के काम पर नज़र रखी जाती है। इसे सुपरवाइजर्स को तुरंत पता चल जाता है कि किस जगह पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे खास बात ये कि किसी भी धार्मिक यात्रा की सफलता सिर्फ सिक्योरिटी या मेडिकल फैसिलिटीज से नहीं होती। सफाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर ये व्यवस्था मजबूत हो तो यात्रियों को एक साफ, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल मिलता है और प्रकृति की हिफाजत भी होती है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर की यह प्रस्तुति आकाशवाणी बालतल के स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त बालतल के आधार शिविर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहीम रिजवान फोन लाइन पर मौजूद हैं और अपने श्रोताओं के साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। जी रिजवान
1: जी, इस वक्त हम बालतल में मौजूद हैं। जैसे कि पहले ही हमने अपने श्रद्धालुओं तक और अपने श्रोताओं तक ये बात पहुंचाई है कि बाबा बर्फानी के पद शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं और अभी तक जो 11,587 श्रद्धालु पवित्र गुफा जाकर जिन्होंने हाजिरी दी और शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं। और श्रोताओं को ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो नुनवन पहलगाम की तरफ से गुफा पवित्र गुफा जाते हैं दर्शन के लिए, वो भी बदल मार्ग से ही वापस आते हैं। और अगर व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे मसले सफाई सुथराई के बारे में भी बात करेंगे तो हमारे साथ विकास कुमार जिन्होंने अभी ज्वाइन किया जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस वर्ष जिला प्रशासन ने यहाँ रखी है और क्या और कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये कई दहाइयों से यहाँ यात्रा पे आते हैं और यहाँ सेवा भी करते हैं लोगों का, तो क्या कुछ करने की जरूरत है। विकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए आकाशवाणी को। तो क्या कहना चाहते हैं आप आज की जो यात्रा जारी है इस हवाले?
2: मैं विकास शर्मा गुरु सर मंडल तिरंगे वाले भंडारे से एक छोटा सा सेवादार। हम पिछले 20 वर्षों से बालटाल पर भंडारा लगा रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से हैंडीपैड लिंक ग्रांट पर। इस बार जो हमने यात्रा देखी है कि पिछले कई वर्षों से ज्यादा हमने यात्रा देखी है और मात्र ये हमारे कहना में अभी एक हफ्ता ही बीता है और हम इस

0: ग्यारह पार कर चुके हैं और जिस तरीके से बाबा बाबा बर्फानी के शिवलिंगम के दर्शन करने चना में श्रद्धालु आ रहे हैं, हमें बहुत ही उत्साहित है, सभी भंडारे वाले उत्साहित है और उनकी सेवा को हम बड़े प्रोत्साहन और गर्म सुख की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सारे बालीताल पर पूरी नूरगंज से लेकर गुफा तक और बालीताल से लेकर गुफा तक सारे भंडारे 24 घंटे के लिए पूरे 24 घंटे नॉन स्टॉप अमरनाथ यात्रियों की सेवा कर रही है।
1: मुझे बताइए कि व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिला प्रशासन ने इस वर्ष किस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी हैं, क्योंकि जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा खुद ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं उनको देख रहे हैं, तो क्या आप मुतफिक हैं उनसे?
0: सर देखा जाए दोनों काबिल अफसर है, इन दोनों ने जो डीसी गांधरबल है श्री जतिन किशोर जी और हमारे एसएसपी साहब हैं श्री सुधांशु दामा जी, ये बहुत ही काबिल एक अफसर है। इन्होंने बालीताल से लेकर गुफा तक जिस तरह के अरेंजमेंट कर रखे हैं पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करने दे रहे। सिक्योरिटी रीजन भी पर्टिकुलर के नाम है, एक बिल्कुल पर्टिकुलर चल रहा है, ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी में कोई मतलब लापरवाही करी जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी परिवहन के नाम मतलब यात्री के साथ मतलब किसी भी प्रकार का ना तो पुलिस द्वारा ना शासन द्वारा ना प्रशासन द्वारा ना निष्क्रिय है ना किसी प्रकार की रुकावट है।
1: आप यहाँ का वातावरण देखते हैं और पूरे क्षेत्र में पवित्र माहौल है, तो मुझे बताइए इस माहौल में सफाई सुथराई का किस तरह का ख्याल रखना चाहिए यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को?
0: यहाँ के कैंप डायरेक्टर हो गए अपने श्री वीरेंद्र कुमार मनियाल जी, जिन्होंने सारा उसी तरीके से क्या नाम है आरटीडी को और अपना सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जितने भी स्वाहा वाली टीम है इनको ये समय समय पर कूड़ा उठा रही है। बिल्कुल भी अमरनाथ यात्रा में बालीताल पर कतई भी गंदगी देखने को नहीं मिल रही है और बिल्कुल साफ सुथरी यात्रा हो रही है।
1: धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी आमिर, अगर हम बात करेंगे व्यवस्था के हवाले से, बहुत सारे श्रद्धालु जो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालीताल पहुंचे हैं उनके साथ हमने बात की है, तो व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने उच्च स्तर की सुविधाएं जगह जगह उपलब्ध रखी हैं, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी निगरानी बाजार तौर एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में जो व्यवस्थाएं हैं या सुरक्षा कर्मी जो है वो चौकों चौबंद रखे गए हैं और उच्च स्तर की सुविधाएं जो है वो हर पड़ा पर उपलब्ध रखी गई है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज नवे जो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो बड़ी खुश असलूबी से बालीताल मार्ग से जारी है।
2: रिजवान, आप लगातार बालीताल बेस कैंप में बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भक्त प्रशंसा कर रहे हैं प्रशासन की, उनकी जो आवाज़ है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं ताकि जो आने वाले भक्त हैं वो भी प्रोत्साहित हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
2: गांधरबल से हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहीम रिजवान हमसे जुड़े हुए थे, इनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। यकीनन जब सेवा से जुड़े लोग खुद ये कहें कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उच्च स्तरीय की हैं तो ऐसे भाव को क्या कहिए। फिलहाल के लिए एक भजन पेश करते हैं, उसके बाद 4 बजे तक का यात्रा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं।
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
3: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्स पर। इसके अलावा आप हमें FM पहलगांव 100.1 मेगाहर्ट्स के साथ साथ DTH की आराधना सर्विस और मोबाइल ऐप पर भी हम आराधना चैनल पर दस्तियाब है। इसके अलावा आप हमें वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हमारा ये विशेष प्रसारण चलता है। इस दौरान हमें जो भी अपडेट्स मिलते हैं, अपने श्रोताओं से हम जुड़ते हैं और अपने संवाददाताओं से भी हम बात करते हैं। ज़मीनी हकाइक क्या हैं, ज़मीनी सूरत हाल क्या है, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। हम प्रशासन और आपके दरमियान एक पुल का काम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से जो है वो बेखबर रहें, आपको हर चीज़ की खबर रहे, यही हमारा उद्देश्य है।

आकाशवाणी का यही मकसद है। 2019 से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। वक्फे वक्फे से बीच में बाधित हुआ, फिर से शुरू हुआ और अब 2-4 सालों से हम लगातार अब तक पहुंच रहे हैं। इस FM बालतल के माध्यम से हम वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी पिछले साल जो है वो दस्तियाब आए आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आप हमें सुन सकें। फ़िलहाल के लिए 5 बजने को हैं, हम आपके लिए चंद भजन पेश करते हैं, उसके बाद एक अपडेट लेके आएंगे और कुछ बातें भी करेंगे आपके साथ।

0: विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगांव 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ डीटीएच मोबाइल ऐप आराधना चैनल और साथ ही साथ आप हमें वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। हमारे साथी अनीका रशीद आपसे कुछ साझा करना चाहती हैं। जी
1: श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
0: जी हाँ, साझा कीजिए ज़रूर। आपका जो भी कोई प्रश्न होगा, अनुभव होगा, या यात्रा से जुड़ी या हमारे प्रसारण से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई सुझाव या कोई सुधार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको खुले दिल से प्रोत्साहित करते हैं। आप हमें

लिखिए अपने, हमारा जो एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है इसमें हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा है, इस पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी हम बार बार आप तक पहुंचाते रहे हैं, उस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल 4 बजे तक का जो दर्शन अपडेट है वो हमने आप तक पहुंचाया है। 4 बजे तक जो है कुल मिलाकर जो हमने संख्या आपके साथ साझा की वो है 20,973। जी हाँ, 20,973 भक्तों ने अभी तक बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। इनमें पुरुषों की संख्या 14,240, महिलाएं 6,174, बालक 168, साधु जो है 138, साध्वीज 8, ट्रांसजेंडर 10 और 235 सुरक्षा बल भी इस जत्थे में, इस कारवान में शामिल था। फिलहाल के लिए बने रहिए एफएम बालतल के संग। 5:30 पर हम आपके लिए जो हमने आरती रिकॉर्ड की है बालतल में वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपके लिए चंद भजन।

0: 5:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती सुनते हैं।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े

ही पुण्यकर्मी हैं जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है, हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए, और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से, भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन, आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: नाव चले नायब पतवार पकड़ ले तो भिन माजी के नाव चले नायब पतवार।
1: जी हाँ श्रोताओं, समय हुआ चाहता है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आपको बता दें कि 4 बजे तक का दर्शन अपडेट जो हम तक पहुंचा है उसके अनुसार 23,901 भक्तों ने बाबा भोले की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उनका दर्शन प्राप्त किया है। अब आज के विशेष प्रसारण से हम विदा चाहेंगे, लेकिन अनिका की जबानी।
2: श्रोताओं, इसके साथ ही हम आपसे आज की सभा से समाप्ति चाहते हैं। आपको बता दें कि इस विशेष प्रसारण में हमें तकनीकी सहयोग था हमारे इंजीनियर्स जावेद अहमद और इरशाद अहमद का, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक और गुलाम रसूल आखून।

आपके उद्घोषक थे आमिर अशरफ और अनिका रशीद। प्रातः 6:53 पर अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

हाय कैसे शुभ घड़ी आई, चल शिव जी बिहान देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूती रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई, चल शिव जी बिहान देखो पार्वती माई, ये है

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की सात

0: आत्मशक्ति को राम नाम का भरोसा बार बार देकर पवन सुत ने घोर गर्जना की और हवा में उछल पड़े। उनके चरणों की धमक से वो पहाड़ तुरंत पाताल में धस गया। परम भक्त योगीश्वर पवन तनय योग शक्ति से अपना भार संभाल कर निरंतर उड़े चले जा रहे थे। उनके साहस पर रीछ कर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा,
1: हे पर्वतराज, तुम उठकर वायुनंदन को अपना आधार दो।
2: सुंदर प्रस्ताव है महासागर, लो मैं उठता हूं। हे रामदूत महावीर, तुम्हारी असीम भक्ति और शक्ति को धन्य है। आओ क्षण भर मेरे ऊपर रुक कर विश्राम कर लो, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
3: मेरी दया विचारने वाले पर्वत शिरोमणि, आपको प्रणाम है। आपकी प्रेमपूर्ण निमंत्रण का मान रखने के लिए ये लीजिए, मैं अपने हाथ को क्षण भर के लिए टिकाए लेता हूं। किंतु पर्वतराज, राम काज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम।
2: हे वज्रांग, तुम्हें धन्य है, प्रभु कृपा से तुम्हें अपने कार्य में निश्चय ही सिद्धि मिलेगी।

0: ये वानर निश्चय ही परम साहसी और वीर है। देखो वायु तरंगों पर कैसे उड़े जा रहे हैं। परंतु जिसके पुत्र ने देवराज इंद्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और सारे देवगण जिस दशानन से थरथर कांपते हैं, क्या उसके सम्मुख भी ये ऐसी वीरता दिखा सकेंगे? क्या ये रामदूत बनने के सचमुच योग्य हैं?
1: उचित है कि हम सर्पों की माता सुरसा देवी से इस बानर की परीक्षा लेने के लिए गए।
0: ठीक कहा, आओ चले
1: चले। हे माता, प्रभु का दूत बनकर एक बानर लंका जा रहा है, क्या तुम उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकोगी?
2: अवश्य, मैं अभी जाती हूँ। आज सुरन मोहे दीन आहारा।
3: हे यही जननी सुरसा माता, दया करो, राम काज करी फिर मैं आवऊ, सीता की सुध प्रभु ही सुनावूं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुझ जान दे माई।
2: नहीं, मैं तुझे यहां से एक डग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मेरा आहार है।
3: हे माता, मेरा विश्वास करो, जगदम्बा सीता की खोज करके मैं रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार दे आऊं, तब तुम मुझे खा जाना।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अभी के अभी लील जाऊंगी, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगी।
3: यदि ऐसा भी है तो फिर देर क्यों करती हो, खा क्यों नहीं लेती मुझे? सुरसा ने अपना विकराल मुख योजन लंबा फैला लिया, मैं भी तो योजन लंबा हुआ जाता हूँ। जैसे जैसे तू अपना मुख फैलाती जाएगी, मैं भी अपनी देह विशाल करता जाऊंगा। नाग माता अब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इसलिए क्यों ना मैं इसकी विशाल मुख में लघु रूप धर कर घुस जाऊं और इस प्रकार नाग माता की इच्छा पूरी करके चटपट अपने रास्ते लगूं।
2: अरे हनुमान ने तो बड़ी चतुराई की, कितना छोटा रूप बनाकर इसने विद्युत गति से मेरे मुख में प्रवेश किया और एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ गया।
3: हे माता, मैंने तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य किया, आप कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दो।
2: हे अंजनी कुमार, रावण के भय से सदा कांपने वाले देवगण तुम्हारे बुद्धि बल को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहते थे, तुम उस कसौटी पर खरे उतरे। मोहे सुरन जेही लाग पठावा, बुद्ध बल मर्म तोर मैं पावा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान।
4: नाग माता के आशीर्वचनों को विनीत भाव से ग्रहण कर हृदय में राम का ध्यान करके पवनसुत बड़े वेग से उड़े। समुद्र के ऊपर से जाते हुए उन्हें छायाग्राही राक्षस मिला। राक्षस ने एक बड़ा आहार उड़ते हुए देखा, उसने लपक कर मारुति की छाया पकड़ ली। पवन कुमार ने अपने मार्ग में आई हुई ये छोटी सी बाधा क्षण मात्र में ही दूर कर दी। पवनसुत समुद्र पार करके सीधे लंका पहुंच गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका नगर का अवलोकन किया।

0: राजधानी की सुरक्षा के निमित्त कड़े पहरे का प्रबंध देखकर कपींद्र केसरी किशोर छोटे से मच्छर के समान सूक्ष्म आकार धारण करके चतुराई से रावण की नगरी में प्रवेश करने चले और सब पहरेदारों की दृष्टि तो चूक गई, किंतु द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी ऐसी माया थी कि कोई चोर उससे छिप नहीं सकता था। राक्षसी ने उन्हें आकाश में ही घेरा और बोली,
1: जा नहीं नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
2: अच्छा हुआ अपने पाप का फल भुगतती लंकनी लहू गिराती हुई धरती पर लुढ़कती हुई गिर पड़ी।
1: हे महावीर, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यही चिन्ह बतलाया था कि बंदर के मारने से जब तू व्याकुल हो उठे तब समझ लेना कि लंका का नाश निकट आ गया है। अब मैं धन्य हुई। तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौसलपुर राजा।
2: लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा।
3: राम राम श्री राम श्री राम।
2: अरे
3: श्री राम,
2: ये तो सज्जन है।
3: श्री राम,
2: इससे जान पहचान करनी चाहिए।
3: राम राम।
2: अच्छा, तू विप्र का रूप धारण कर इससे मिलता हूं। हे भगवत भक्त, अपने द्वार पर खड़े विप्र को देखो।
3: विप्रवर, विप्रवर अपना वृत्तांत तो मुझसे कहें। आपको देखते ही मेरे मन में प्रबल आनंद तरंगे उठ रही हैं। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई विभूति हैं? क्या आप दीन जनों के प्रेमी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और मुझ अकिंचन को बड़भागी बनाने के लिए स्वयं इतना कष्ट करके पधारे हैं? बोलिए बोलिए भगवान, बोलिए आप कौन हैं?
2: मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता की खोज में यहाँ आया हूँ।
3: हे पवन सुत, अब दया करके हमारी रहनी भी सुनिए। जैसे दांतों में जीभ बेचारी रहती है वैसे ही हमारा निभाव होता है। हे तात, कभी न कभी तो रामचंद्र जी मुझ अनाथ की भी सुधि लेंगे, मेरा भी उद्धार होगा।
2: भक्तराज विभीषण, मैं तो वानर कुल में जन्मा, प्रकृति से चंचल और सब प्रकार से दीन हूँ। भोर के समय जो हमारा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। जब मेरे समान अधम पर भी श्री रामचंद्र जी कृपाल हुए तब आपकी पुकार पर भी दौड़े आएंगे। अब ये बतलाइए भक्तराज, क्या जगदम्बा सीता जी लंका में हैं?
3: हाँ यहीं हैं।
2: मैं पूरी लंका छान आया किंतु मुझे उनके कहीं दर्शन नहीं हो सके।
3: वे अशोक वन में हैं।
2: साधु साधु, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, पता पा जाने पर माता के दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं।
0: नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। हनुमान जी ने देखा ऐसी गहन करुणा में भी वे राम चरण लीन थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करूं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा संग नारी, बहु किए बनावा, बहुबिध खल सीतें समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
2: सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी याद सब रानी, तब अनुचरी करहु पनमोरा, एक बाहर बिलो की ममोरा।
1: रे नीच रावण, क्या तूने कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी को खिलते देखा है? वो सूर्य से ही संभव है। रे दुष्ट दशमुख, तुझे अभी रामचंद्र जी के बाणों का पता नहीं है। सठ सू नहीं हरी आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही।
2: सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अभी तलवार से तेरा शीश काटकर इस लीला का अंत ही किए देता हूं।
1: ये तो तू मेरे मन की बात कह रहा है, मैं तुरंत इस संकट से उबर जाऊंगी।
2: सूर्यवंशी राम में भला ऐसी कौन सी विशेषता है जो पुलस्त्यवंशी मुझ दशानन रावण में नहीं है?
1: सुनेगा रे नीच तो सुन। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, फुलस्तय के समान श्रेष्ठ ऋषि कुल को अपने कुकर्मों से कलंकित करने वाले रे दुरात्मा, विश्वास रख मेरा वचन निरर्थक न जाएगा। एक दिन मेरे स्वामी तुम्हारे इन सभी शीशों को एक ही बार में उतार डालेंगे।
2: मैं अभी तेरा अंत किए देता हूं।
4: हे नाथ, समस्त जगत के स्वामी, आप जैसे अजय योद्धा हैं, वैसे ही महापंडित भी हैं। दासी मंदोत्री की प्रार्थना स्वीकार करें, पर स्त्री की हत्या करना नीति विरुद्ध है। हे नाथ, ऐसा ना करें।
2: ठीक है, ठीक है। सीता, तुझे एक मास और सोचने का अवसर देता हूं।
5: बहनों, मैंने कल रात एक सपना देखा है।
1: क्या देखा सपने में तूने त्रिजटा?
5: मैंने देखा है कि एक बंदर ने आकर लंका को जला डाला है। राक्षस सब मारे गए हैं और हमारे मालिक रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका मस्तक मुंडा हुआ है और बीसों हाथ कटे हुए हैं।
1: अरे सच?
5: अरे झूठ थोड़े ही कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि नगर में रामचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर रही है और वो सीता जी को साथ लेकर तथा यहाँ का राज विभीषण को देकर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। भोर का सपना था बहन। तुम सब जानती हो कि मेरे मन में ना तो किसी प्रकार का छल है, ना कपट और ना स्वामी भक्ति में ही मैं किसी से पीछे हूँ। पर बात तो कही जाएगी। मेरा मन कहता है कि स्वामी ने सीता जी का हरण करके अपना भला नहीं किया।
1: हम तो निर्बुद्धि हैं त्रिजटा, जैसा मालिक ने कहा वैसा कर दिया।

0: तुम जो सपने की बात सुना रही हो उससे हम सबके मन में बड़ा भय समा गया है।
1: ठीक बात है
0: त्रिजटा, तुम ही उपाय बताओ बहन, ऐसे में हमें क्या करना उचित होगा?
2: मेरी जान में दंड देने योग्य किसी ना किसी भयंकर खोज का बहाना करके तुम लोग इधर उधर हो जाओ। मैं इस बिचारी देवी स्वरूपा तपस्विनी देवी को थोड़ा बहुत धीरज बंधाऊंगी।
3: हे स्वामिनी, आपके समान तेजस्वी नारी को अपार दुख में इस तरह डूबा हुआ देखकर मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ। मैं राक्षसी भले ही हूँ पर हरि के चरणों में मेरा असीम अनुराग है। मैं अपनी भरसक सेवा से आपको संतुष्ट करूंगी। मैंने एक सपना देखा था स्वामिनी कि रामचंद्र जी लंका को विजय करके आपको ले गए हैं।
0: अरे न जाने कब क्या होगा त्रिजटा, परंतु ये तो निश्चय है एक मास के अंदर ही वो दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। इन आंखों से मैं अपनी जीवन धन को फिर कभी ना दिख सकूंगी।
3: अपने मन को तनिक भी छोटा ना करो स्वामिनी, मेरा भोर का सपना कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
0: हे माता, तुम जब इतनी दया दिखला रही हो तो मेरे लिए एक चिता भी बना दो। मैं ये देह त्याग कर अब अपने पति के हृदय में निवास करना चाहती हूँ।
3: अरे नहीं स्वामिनी, आप अपना मन यूं छोटा ना करो।
0: नहीं माता, तुम चिता बनाकर मेरा परम उपकार करो।
3: हे सुकुमारी, अभी ये संभव नहीं है। हम भला रात के समय आग कहाँ पाएंगी? आप धीरज रखें, मैं कल कोई ना कोई उपाय सोचूंगी। अच्छा तो मैं भी अब घर चली जाती हूँ, आप विश्राम करें स्वामिनी।
0: विश्राम? विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर विश्राम का ना आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे सुलग रहे हैं, एक मुझ पर भी गिर पड़े तो सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाए। पावक मैं शशि सवत न आगी, मानह मोहि जाने हत भागी। सुने ही विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, तेहि अग्नि जनि करहि निदाना।

प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या ये कोई और मुद्रिका है? नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय हैं। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती।

0: सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हमी लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे, वहीं सुग्रीव और रामजी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ।
1: हे तात, विरह जलधि में डूबती हुई दुखिनी के हेतु तुम नौका बनाए हो। हे पुत्र, अब तुम मुझे देव लक्ष्मण और रघुनाथ जी के समाचार सुनाओ। कोमलचित्त वाले रघुकुल तिलक ने मेरे प्रति ऐसी निठुराई क्यों बरती है?
0: हे माता, जगत के नाथ श्री राम जी भला निठुर कैसे हो सकते हैं?
1: हे नाथ, आप तो ऐसे कोमलचित्त के हैं कि अपने दास दासियों तक को भी कभी प्रसन्न नहीं देख सकते। फिर आपने मुझ दुखनी को ही इस प्रकार क्यों बिसा रखा है? हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे श्याम सुकुमार शरीर को मुझे नाकों से फिर कभी देखने का सौभाग्य मिल सकेगा?
0: माता, आप अधीर ना हो, राम जी एक क्षण के लिए भी आपको नहीं बिसार पाए। मैं सच कहता हूं, उनका दुख आपसे दुगना है। लक्ष्मण जी भी यूं तो कुशल पूर्वक है, पर आपके दुख से उन्हें भी अपार दुख है। विश्वास रखें, श्री राम जी दुष्ट दशानन का वध करके शीघ्र ही आपके पास आएंगे।
1: क्या श्री राम जी ने मेरे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया?
0: ऐसा मत कहे माता। कहो राम वियोग तब सीता, सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनहु किसानु, काल निशासम निस ससि भानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जन बरिसा, जेहि तिरहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविद समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्तु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। माता, आप धैर्य धारण करें और अपने सेवकों को सदा सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करके अपनी ये कातरता छोड़ दें। ये राक्षस पतंगों के समान शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के प्रखर बाणों की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। हे माता, मैं रघुकुल नायक की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की है। हे अंब, विश्वास कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, दीन बंधु दयानिधि सेना समेत यहां आकर राक्षसों का संहार करेंगे।
1: हे पुत्र, तुम्हारी ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर भी मेरा मन शंकित है। भले इन पर्वतों जैसे लंबे चौड़े महाबलशाली राक्षसों से क्या प्रभु जीत सकेंगे? अरे, हनुमान जी ने अपना विराट रूप उद्घाटित किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। इनके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास होता है कि श्री राम जी अवश्य विजयी होंगे।
0: हे माता, वैसे तो हम बंदरों की बल बुद्धि बड़ी साधारण सी है, पर विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा होने पर एक नन्हा सा सर्प भी अति विशाल काय गरुड़ को खा सकता है।
1: हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो, रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ आकर मुझे परम सुख दिया है, तुम्हारा कल्याण हो।
0: माता,

0: मैं धन्य हूं। कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं।
1: जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

0: अपने पुत्र अक्षय कुमार तथा अनेक योद्धाओं का संहार करने वाले वानर के ऊपर अब तो रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से मेघनाद अनेक महाबलशाली योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। युद्ध में मेघनाद का रथ टूट गया। इससे मेघनाद और उनके साथियों के क्रोध का वारापार नहीं रहा। सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, किंतु महावीर ने राम कृपा से एक एक के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान के प्रहार से इंद्रजीत को भी क्षणभर के लिए मूर्छा सी आने लगी। अंततः मेघनाद ने उनसे माया युद्ध करना आरंभ किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कह तेहू मारा, परतिहू बार कटक संघारा। तेही देखा कपि मुरछित भयो, नाग पास बांधे से ले गए। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां देव दनुज नर किन्नर सब हाथ बांधे खड़े थे। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और बोला,
1: कवन तय खीसा कहके बल घाल से बल खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सट तोई न प्राण कहीं बाधा।
2: सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और शेषनाग जिसकी आज्ञा से धरती अपने शीश पर धारण किए हुए, जिन्होंने क्षण मात्र में ही शिव जी का धनुष भंग करके तुझे और तेरे समान दुर्मति राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया था, और जिनकी अर्धांगिनी को तू चुरा कर लाया है, हे अधम, मैं उन्हीं समर्थ राम का सेवक हूं। घूमते घामते कुछ

0: लगी तो फल खाने लगा। अरे अपने स्वभाव बस दो चार पेड़ मुझसे टूट गए और जो मेरे भोजनानंद में बाधक हुए वे मारे गए, इसमें मेरा क्या दोष है?
1: अरे कुटिल कत, तू कदाचित मेरे प्रभाव को अब भी नहीं समझा। देख, मेरे इंद्रजीत पुत्र ने तुझे क्षण मात्र में ही बांधकर पटक दिया है।
0: हे महाराज रावण, तुम्हारी शक्ति और प्रताप से मैं परिचित हूं और मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बंधकर भी मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं।
1: इस प्रकार बंदी होकर तू अपने स्वामी का क्या भला कर रहा है बंदर?
0: हे दशानन, मैं तुमसे सविनय प्रार्थना करता हूं कि अपना अभिमान छोड़ दो, जिसके कारण महापंडित होकर भी तुम मेरे प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहे हो। हे वीर, तुम अपने परम पवित्र ऋषि कुल की तनिक तो लाज रखो। ये मत भूलो कि जिनकी सती पत्नी का तुम हरण कर लाए हो उनके भय से देवता और राक्षसी क्या स्वयं काल भी थर थर कांपता है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
1: कोई है, इस दुष्ट की गर्दन उतार लो।
2: हे परम प्रतापी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा पाप न करें।
1: तुम्हारी यह मंत्रणा मुझे स्वीकार है विभीषण, मैं अब इसका वध नहीं करूंगा, वरन इसकी अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजे देता हूं। बंदरों की अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा लपेट कर और तेल छिड़क कर आग लगा दी।

0: उलटि पुलटि लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी।
1: हे माता, आपके चरणों के प्रताप से मैं लंकेश को उचित शिक्षा देकर आ रहा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह स्वरूप अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे अपना कोई चिन्ह देने की कृपा कीजिए।
2: हे पुत्र, श्री मेरा चूड़ा मणि तुम लेते जाओ। इसे देखकर मेरे नाथ संतुष्ट हो जाएंगे और कहे हो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदो सम भारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। कहना हे नाथ, यदि आप एक मास के भीतर मुझे लेने के लिए ना आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी।
1: हे माता, आप अपने मन को इतना छोटा न कीजिए, धैर्य धरिए।
2: हे पुत्र हनुमान, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु कृपा से तुम आज आ गए तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल गया है। तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, पर अब तुम भी जा रहे हो, मेरे लिए वही दुखदायी दिन और वही प्राण लेवा रात फिर से आ गई।
0: जनक सुते ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गमनु राम पहिंकी। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए। और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना